इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

0: लेकर आ रहा
1: हूँ। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोष शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कन तोहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

अपने बंदी।

92.2 मेगाहर्ट पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुकिए रुकिए रुकिए रुकिए,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, फिर
1: ओ यस यस यस, हां सर,
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, अगर जान गए तो।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: तो बिजली बचाओ, देश बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मना ही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान न करें न करने दें।
2: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
3: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
2: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
3: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
2: क्या वो पापा जी मान गए?
3: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्म।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए। तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, अगर जान का है जवाब।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो

कि आज का दिन कितना अद्भुत है। यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या? मनाही है, कानून है, फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके।
1: क्या वो पापा जी मान गए?
2: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते, और इसी नमस्ते के साथ ही श्रोताओं आगे बढ़ते हैं। पूरे दो घंटे का सफ़र आपके साथ रहेगा। इस दो घंटे के सफ़र में करेंगे ढेर सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा, और आपको सुनवाएंगे प्यारे प्यारे गीत। तो जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओ, वैसे तो हमें पता है कि आवाज़ के जरिए आप लोग पहचान जाते हैं, लेकिन आए दिन हमारे साथ नए नए श्रोताओ जुड़ते रहते हैं, भी उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा अपना परिचय देना तो बनता है ना। जब तक हम परिचय नहीं देंगे तब तक हमारी जान पहचान नहीं होगी। इसी जान पहचान के साथ श्रोताओ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विचार की। कहते हैं, बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। समझदार व्यक्ति वही होता है जो ईंट माफ कीजिएगा समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जी हाँ, इस तरह से हमें करना चाहिए, और किसी भी की भी बात का बुरा या गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमें कोई सीख देता है तो उस सीख को हमें तुरंत मानना चाहिए और अपनी समझदारी से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो तरक्की के रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं, और जब तरक्की हमें मिलती है तो हमें तो खुशी और सुकून मिलता है, साथ ही साथ हमारे अपनों को भी खुशी और सुकून मिलता है। तो श्रोताओ, जीवन में ये सुकून बेहद ज़रूरी होता है। इसी सुकून के साथ थोड़ा सा और सुकून हम लेते हैं गीत के जरिए। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमंत। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के वेदर की, यानी आज के मौसम की। श्रोताओं, आज का मौसम है 29 डिग्री सेल्सियस और मौसम में ह्यूमिडिटी बनी हुई है 60%। और आजकल के दिनों की श्रोताओं बात करें तो पल का पता नहीं चलता है कि कब धूप हो जाती है और कब बारिश हो जाती है। तो इस मौसम में हम सभी को अपना ख्याल रखना है। जब भी बाहर कहीं जाना है तो अपना छाता ज़रूर साथ में लेकर जाएं, या फिर अगर दो पहिया वाहन चलाते हैं तो अपनी बरसाती ज़रूर साथ में रखें। क्योंकि श्रोताओं, क्या होता है कि भीग जाने से हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारा शरीर गर्म होता है, और एकदम ठंडी बारिश जब पड़ती है तो उस समय सर्द गर्म होने की वजह से थोड़ा सा हमारे लिए परेशानी हो जाती है, हम हो जाते हैं बीमार। और इस समय हमें खानी पड़ती है मोटी मोटी दवाइयाँ खाने को किसी का भी मन नहीं करता है, क्योंकि जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो हमारे डॉक्टर थोड़ा सा परहेज खाने पीने का भी हमें बता देते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता खा पी कर इस प्यारे से जीवन का आनंद ले। तो श्रोताओं, इसके लिए रखना होगा आप सभी को अपना ध्यान और ख्याल। इसी ख्याल के साथ हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें भी रखना होता है आप सभी का ध्यान। तो श्रोताओं, रखते हैं आपका ख्याल और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: चलो इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है 9:20, तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज एक दिवसीय हमीरपुर दौरे पर, कई विकास योजनाओं के करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की धर्मशाला में कल से प्रस्तावित बैठक स्थगित। जलोड़ी जोत में समुदाय आधारित इको टूरिज्म मॉडल बना आजीविका संरक्षण सहभागिता की मिसाल। प्रदेश पुलिस ने एंटी चिट्टा अभियान के तहत प्रदेश भर में चलाया विशेष तलाशी अभियान, 840 संदिग्धों की हुई स्क्रीनिंग। और प्रदेश में मॉनसून 18 जुलाई से फिर पकड़ेगा रफ्तार, भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने गृह जिला हमीरपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री हमीरपुर में रानी झांसी पार्क पर नगर निगम की 13 दुकानों का उद्घाटन करेंगे और टाउन हॉल परिसर में नगर निगम के कार्यालय भवन का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री टाउन हॉल में ही एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर बाद शिमला लौट आएंगे। उपायुक्त गंधर्व राठौड़ ने नगर निगम के अधिकारियों को उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की धर्मशाला में 16-17 जुलाई को प्रस्तावित बैठक स्थगित हो गई है। ये बैठक पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की व्यवस्था के कारण स्थगित हुई बताई जाती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बैठक स्थगित होने की पुष्टि करते हुए कहा कि अब ये बैठक अगले सप्ताह होगी, हालांकि फिलहाल इसकी तिथि तय नहीं हुई है। इस बैठक में पार्टी के संगठनात्मक मुद्दों, सरकार व संगठन के बीच और राजनीतिक नीतियों पर चर्चा होनी थी। पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के हाल ही में संपन्न चुनाव में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आज शिमला के निकट मशोबरा में होगा। प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सी पाल रासू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व क्षमता को सशक्त बनाने, पंचायतों में सुशासन और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा महिला जनप्रतिनिधि अपने अनुभव और सुझाव भी साझा करेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक विपिन सिंह परमार ने कांगड़ा के परौर स्थित निर्माणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। परमार ने कॉलेज की स्थिति के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि सरकार की लापरवाही ने करोड़ों रुपए की इस संपत्ति को खंडहर बना दिया है। परमार ने इस निर्माणाधीन कॉलेज भवन का दौरा करने के बाद कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 30 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को शुरू करवाया था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इसे कॉलेज के भवन के कार्य को शीघ्र पूरा नहीं किया तो भाजपा इस मुद्दे पर जन आंदोलन करेगी। कुल्लू जिले की प्रसिद्ध जलोड़ी जोत में वन विभाग द्वारा आरंभ किया गया सामुदायिक आधारित इको टूरिज्म मॉडल स्थानीय महिलाओं को रोजगार के साथ साथ प्रदेश के हस्तशिल्प और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
2: कुल्लू जिला में इको टूरिज्म को केवल पर्यटन गतिविधि तक सीमित न रखकर उसे स्थानीय आजीविका, सामुदायिक भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की दिशा में वन विभाग ने एक सराहनीय और अनुकरणीय पहल की है। जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जलोड़ी जोत में विकसित कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म मॉडल इस बात का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। इस क्षेत्र को सुनियोजित ढंग से विकसित करते हुए वन विभाग ने लाडा के सहयोग से यहां लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से 11 इको हट्स, नेचर इंटरप्रिटेशन एंड सर्विस सेंटर तथा अन्य आवश्यक पर्यटन सुविधाओं का सृजन किया है। इनमें से 7 इको हट स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वे यहां आने वाले पर्यटकों के लिए ठहरने, स्थानीय व्यंजनों और आतिथ्य सेवाओं की व्यवस्था कर सकें। विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूह की भागीदारी इस मॉडल को और अधिक सशक्त बनाती है। करीब 100 महिलाएं जलोड़ी से रघुपुर फोर्ट तथा जलोड़ी से श्रीअलसर झील के रास्ते अपने हाथों से निर्मित शाल, पट्टू, जुराबें, दस्ताने, मफलर, धातु टोपी व अन्य ऊनी वस्त्रों को और पारंपरिक उत्पादों की बिक्री कर रही हैं। इसे एक और जहां जहाँ हिमाचली हस्तशिल्प और स्थानीय संस्कृति को पहचान मिल रही है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों को निपटाने के लिए समाधान समारोह यानी विशेष लोक अदालत 2026 के लिए इच्छुक पक्षकार 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कांगड़ा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण धर्मशाला के सचिव आर मेहुल शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह और मध्यस्थता से निपटाने के लिए गूगल फोरम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि आम लोगों के लिए न्यायालय सुलभ बनाने के उद्देश्य से 21 अप्रैल से सर्वोच्च न्यायालय परिसर में समाधान समारोह का शुभारंभ किया गया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश पुलिस ने अपने एंटी चीटा अभियान के तहत राज्यव्यापी गहन तलाशी अभियान चलाया और 573 निर्जन स्थानों पर संदिग्ध लोगों को निरीक्षण किया। इस अभियान के तहत गांवों और शहरों में संदिग्ध लोगों के आवश्यकतानुसार मूत्र के नमूने भी एकत्रित किए गए। पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि इस अभियान का उद्देश्य निर्जन, एकांत और अर्ध सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना था, ताकि प्रदेश में सुरक्षित और नशा मुक्त वातावरण बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान कुल 840 संदिग्ध लोगों की स्क्रीनिंग की गई और 1774 वाहनों की तलाशी भी ली गई। प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस विभाग प्रदेश में चिट्टे के समूल नाश के लिए दृढ़ संकल्प है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना को लेकर लगातार झूठ बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2019 से 2022 तक की मांगी गई जानकारी के जवाब में ये खुलासा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी योजना शुरू करने में नाकाम रहे और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं को घोटाले का झूठा नाम देकर कीचड़ उछाल रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता संदीप भारद्वाज ने प्रदेश सरकार पर पर्यावरण कानूनों की खुली अनदेखी करने का आरोप लगाया है। संदीप भारद्वाज ने शिमला में एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम के तहत बोर्ड में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार ने सचिव पर्यावरण को ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया है, जो नियमों के विरुद्ध है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार इस तरह के गलत निर्णय लेकर संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर कर रही है और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का राजनीतिक व मनमाना उपयोग कर रही है। उन्होंने सरकार से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तुरंत पूर्णकालिक सदस्य सचिव की नियुक्ति की मांग की है। मॉनसून के प्रदेश में कई दिनों तक सक्रिय बने रहने के बाद अब इसकी रफ्तार कुछ धीमी हो गई है। राज्य में बीते दो दिनों से मॉनसून की नाममात्र की वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 17 जुलाई तक मॉनसून के कमजोर बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटिया ने कहा कि 18 से 22 जुलाई के बीच प्रदेश में मॉनसून फिर से सक्रिय रहेगा और इस दौरान अधिकांश स्थानों पर मॉनसून की वर्षा की संभावना है। विभाग ने इस अवधि के दौरान भारी वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया है। शोभित कटिया ने कहा कि प्रदेश में जुलाई महीने में अभी तक सामान्य से 21% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, अनुबंध कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियमित करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिया था आदेश, कर्मचारियों को नोटिस, 24 अगस्त तक मांगा जवाब। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है कि शाऊ जलविद्युत परियोजना से निवेश किए बिना 600 करोड़ राजस्व, नालागढ़ में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर दैनिक जागरण का शीर्षक है, निवेश बैंकों से 40% राशि पहले लेगी सरकार। जबकि हिमाचल दस्तक के शब्द है मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश को मापदंड तय। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है सोलन को 500 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री सुक्खू ने ममलीग में निर्मित परियोजना का किया उद्घाटन। दैनिक सवेरा टाइम्स ने राज्यपाल कविंद्र गुप्ता के हवाले से लिखा है हर 3 माह में हो विश्वविद्यालय कोर्ट की बैठक, शोध कौशल आधारित शिक्षा पर दे जोर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज एक दिवसीय हमीरपुर दौरे पर, कई विकास योजनाओं के करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की धर्मशाला में कल से प्रस्तावित बैठक स्थगित। जलोड़ी जोत में समुदाय आधारित इको टूरिज्म मॉडल बनना आजीविका संरक्षण और सहभागिता की मिसाल। प्रदेश पुलिस ने एंटी चिट्टा अभियान के तहत प्रदेश भर में चलाया विशेष तलाशी अभियान, 840 संदिग्धों की हुई स्क्रीनिंग। और प्रदेश में मॉनसून 18 जुलाई से फिर पकड़ेगा रफ्तार, भारी वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोताओं, समाचार और अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला और हम बात कर रहे हैं आज के इतिहास के बारे में। श्रोताओं, आज है 15 जुलाई का दिन, भारत और इतिहास में खास स्थान रखता है और साथ ही साथ इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न देने की घोषणा और ट्विटर की शुरुआत जैसी महत्वपूर्ण घटनाएँ भी हुई थी। भारत और विश्व के इतिहास की मुख्य घटनाओं की बात करें तो सन 1795 में मार्सिलिस को फ्रांस का आधिकारिक राष्ट्रगान घोषित किया गया था। 1916 में दुनिया की सबसे एरोस्पेन और विमान निर्माता कंपनी बोइंग की शुरुआत की गई थी। 1955 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था और इसके साथ साथ 2006 में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को लॉन्च किया गया था। 2011 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठित ने PLLVC-17 के जरिए उन्नत संचार उपग्रह GSAT-12 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया था। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोतो, इस प्यारे संगीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां अभी हमें आप तक पहुंचानी हैं। तो उन्हीं जानकारियों में फिर से आज के इतिहास की ओर हम रुख करें तो 2000 की बात करें तो सियेरा लियोन ने सैन्य कार्रवाई द्वारा सभी भारतीय सैनिक बंदूक मुक्त करवाया था। 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारे उमर शेख को पाकिस्तानी अदालते मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 2004 में भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक तथा परिवार नियोजन विशेषज्ञ बानो जहांगीर कोयाजी का निधन हुआ था। और 2011 की ओर थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में PSLV-C17 के जरिए GSAT-12A का श्री हरिकोटा में सफल प्रक्षेपण किया गया था। 2017 में गणित की दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान फील्डर मेडल पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ मारियम मिर्जा खानी का निधन हुआ था। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ भी और भी बहुत सारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिए रेडियो कुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोता इस समय बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम थोड़ी सी इतिहास की बात कर रहे थे श्रोता, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को 15 जुलाई को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की गई थी। साथ ही साथ वर्ष 1954 में स्थापित ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया था और जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी दूसरी ऐसी शख्सियत रही है जिन्हें प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो श्रोताओ ये तो थी आज की जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में आप सभी का फिर से करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन की बात करते हैं। आज है 15 जुलाई और आज के दिन को हम मना रहे हैं विश्व युवा कौशल दिवस। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, बेहतर आजीविका और उद्यमिता के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करना। इसके साथ साथ इस दिन को मनाने का खास उद्देश्य ये रहता है कि युवाओं में कौशल विकास के महत्व को उजागर करना। और साथ ही साथ श्रोताओ, आधुनिक तकनीकी युग में केवल शैक्षणिक डिग्री ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं को तकनीकी और व्यवहारिक रूप से कौशल बनना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था की बदलती मांगों के अनुरूप काम कर सके। और ये दिन युवाओं को सशक्त बनाने और बेरोजगारी की चुनौतियों से निपटने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करता है। तो श्रोता, हम सभी के बीच में कोई ना कोई हुनर जो है छिपा होता है, ज़रूरत होती है तो उस हुनर को निखारने की और तराशने की। जब हम अपने अंदर छुपे हुए हुनर को निखारते हैं, तराशते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ते हैं और तरक्की भी पाते हैं। तो श्रोताओ, इन्हीं बात और जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से थोड़ा सा रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो कार्यक्रम में हम विश्व कौशल दिवस के बारे में बात कर रहे थे श्रोताओ। तो भारत जैसे विशाल देश में जहां दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग मौजूद है, इस दिन का विशेष महत्व रखता है। और भारत सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर और कुशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत भी की है। और इस योजना के माध्यम से करोड़ों युवाओं को उद्योगों की ज़रूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है। और हम किसी भी तरह का कोई काम सीखना चाहते हैं तो हम उन कामकाज को सीख भी सकते हैं। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा हम रोकते हैं और अगला गीत आप तक पहुँचाते हैं।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और हम कार्यक्रम में बात कर रहे थे वर्ल्ड यूथ स्किल डे के बारे में। श्रोताओं, युवा देश का भविष्य होते हैं, ऐसे में देश के युवाओं की प्रतिभा को पहचानना और उन्हें और अधिक कुशल बनाना बेहद ज़रूरी होता है। किसी भी देश का विकास कुशल युवाओं के मजबूत कंधों पर होता है, चाहे वे रोजगार या उद्यमिता में माहिर हो। कार्य में प्रदर्शन के लिए कौशल का होना बेहद ज़रूरी है। इसी मकसद से हर साल यानी आज के दिन 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का खास मकसद युवाओं के कौशल का निरीक्षण करना और उन कदमों को समझना है जिन्हें युवा समय के साथ अधिक कुशल बन सके। थोड़ी सी हम श्रोता विश्व कौशल दिवस के इतिहास की बात करें तो इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2014 में की गई थी और ये दिन युवाओं को नौकरी के लिए आवश्यक कौशल के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए घोषित किया जाता है। साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने विकास की एक स्थायी मॉडल की तरफ बढ़ते हुए दुनिया में कौशल को लगातार बढ़ते महत्व को पहचाना, जिसके बाद उन्होंने 15 जुलाई 2014 को इस दिन की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज दिन तक हर साल इस दिन को विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारियाँ। जानकारियाँ भी और भी हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने पिटारे में, तो आपके साथ उसे भी साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप सुनते रहिए रेडियो।

तो इस गीत के बाद एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं आपकी सेवा में लेकर ढेर सारी जानकारियाँ। तो इन्हीं जानकारियों में हम विश्व कौशल दिवस की बात कर रहे थे। हर साल विश्व कौशल दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं को तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों, कंपनियों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठन, नीति निर्माताओं और विकास भागीदारी से मिलने और उनसे बात करने का अवसर प्रदान करती है। और साथ ही साथ थोड़ी सी और जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। हर खास दिन बहुत सारी जानकारियां लेकर आता है और जो है कौशल दिवस के लिए अगर थीम की बात करें तो परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों, युवाओं को कौशल बनाना तय करता है। इस थीम का मकसद युवाओं को आकार देने में शिक्षकों और अभिभावकों का बहुत सारा हाथ रहता है। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों के साथ साथ थोड़ा सा आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

मुझको छेड़ो, ऐसे ना मुझको देखो, जो देखना ही कुछ तुमको है तो फिर मेरे दिल को देखो। हम प्यार कह रहे दिल प्यार की है मंजिल, किस काम की ये महफिल, दिल से न मिला जो दिल होगा मिलना हमारा मुश्किल होगा, मिलना हमारा मुश्किल होगा मिलना हमारा।

0: श्रोतो, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मजबूत, समावेशी और भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से साकार किया जा सकता है। उन्होंने विश्वविद्यालय में शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुसंधान गतिविधियों को सामूहिक प्रतिबद्धता तथा संस्थागत नवाचार के माध्यम से निरंतर सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कोर्ट 36वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने विश्वविद्यालय में नवनिर्मित डिजिटल स्टूडियो MOOC रिकॉर्डिंग स्टूडियो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त अधिगम केंद्र के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने स्टूडियो के महत्व के बारे में जानकारी दी है और स्टूडियो गुणवत्ता डिजिटल शिक्षा को अधिक लोगों तक पहुंचाने की सहायक साबित होगी। श्रोताओं, ये तो थी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का एक और अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए।
1: कौन सी फिल्म?

श्रोता, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम थोड़ी सी जानकारियां और आपके साथ विश्व युवा कौशल दिवस के बारे में कर लेते हैं। श्रोताओं, तो युवाओं को ऐसा साधन उपलब्ध करवाने का एक मुख्य उद्देश्य है जिससे वे सार्थक करियर, समाजजनक रोजगार के अवसर और सफल उद्यमी बनने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। ये दिन युवा कौशल विकास से संबंधित बहुत सारी बातों पर भी हमारा ध्यान जो है केंद्रित करता है। साथ ही साथ विश्व युवा कौशल दिवस का इतिहास और महत्व भी हम जान पाते हैं और कौशल दिवस के कुछ प्रेरणादायक जो है उदाहरण भी जो हमें पता चलते हैं। और साथ ही साथ श्रोता, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में इसे चुना गया था जिसकी हमने पहले भी बात की है। तो श्रोताओं, इस दिवस की जानकारी हमने आपके साथ साझा की है और इसी जानकारियों के साथ साथ फिर से आप सब तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो आप सुनते

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की अगली जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया गिविंग डे के बारे में। श्रोताओ, 15 जुलाई यानी आज के दिन इसे सोशल मीडिया डे को मनाया जाता है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग चैरिटी, दान, पुण्य और गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए फंड जुटाने हेतु प्रोत्साहित भी करता है। इस दिन की शुरुआत गिवर नामक एक संस्था द्वारा 2013 में की गई थी और साथ ही साथ जो है इसके महत्व की बात करें तो इसका उद्देश्य सोशल मीडिया को केवल मनोरंजन या बातचीत तक सीमित न रखकर इसे सामाजिक भलाई, दयालुता और ज़रूरतमंदों की मदद करने का एक सशक्त माध्यम भी बनाया गया है। अब बात करें कि इसे कैसे चलाया जाता है, तो NGO और चैरिटी संस्था सोशल मीडिया पर विशेष अभियान चलाकर लोगों को दान करने के लिए प्रेरित किया जाता है और साथ ही साथ लोग फेसबुक, फंडरेजर, इन विल्टू टूल्स का इस्तेमाल करके सीधे अपने पसंदीदा कारणों के लिए धन जुटा सकते हैं। शुद्ध जागरूकता की बात की जाए तो लोग डोनेशन लिंक्स, वीडियो और पोस्ट साझा करके अपने दोस्तों और परिवार तक दान करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियां अभी और भी हम साझा करेंगे क्योंकि अभी समय हमारे पास बाकी है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और इसी स्वागत के साथ कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतराल।

शोधो इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे हम श्रोताओं सोशल मीडिया गिव इंडिया के बारे में। तो थोड़ी सी बात हम इसके इतिहास की करेंगे। साल 2013 में कर्मचारियों ने पूरे अमेरिका में निर्वाचित अधिकारियों के साथ काम करते हुए 5 महीने बिताए। इसके साथ साथ इस दिन को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आदि को भी शामिल किया गया। इस दौरान इसे चैरिटी करने के लिए कोई दबाव नहीं किया गया था, बल्कि लोगों से केवल अपनी पसंदीदा या चैरिटी करने वाले चीज़ों को दान करने के लिए कहा गया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सभी गवर्नर और मेयर्स ने 15 जुलाई को सोशल मीडिया गिविंग डे के रूप में घोषित किया था। तो श्रोता थोड़ा सा कार्यक्रम में हम रुकते हैं और मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोता, मौसम तो बदलते ही रहते हैं, इन्हीं मौसमों के साथ हमें भी थोड़ा सा अपने जीवन में बदलाव लाना है। मौसम के बदलते बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ता है, जैसे हमारे खान

पान रहन सहन, हमारे वेशभूषा, हर चीज़ पर असर पड़ता है और बदलाव होना भी चाहिए क्योंकि बदलाव जो है कुदरत का नियम है। इसी बदलाव के साथ श्रोताओं कार्यक्रम में हम भी आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कार्यक्रम में हम भी बदलाव करते हैं। तो हम सोशल मीडिया की श्रोताओं बात कर रहे थे, सोशल मीडिया गिविंग डे के बारे में थोड़ी सी आज हमारी बातचीत हो रही है। तो 15 जुलाई यानी आज के दिन इसे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत giving.com ने की थी जो एक गैर लाभकारी संस्था है और साथ ही साथ 2013 में ट्विटर के माध्यम से धन जुटा रही थी। giving.com के मालिक किस सोमर्स हैं जो कि ग्राहकों को सोशल नेटवर्क के माध्यम से दान करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं और साथ ही साथ क्रिस सोमर्स लोकप्रिय पाई पिजेरिया चैन के संस्थापक भी रहे हैं। और श्रोताओं जानकारियां तो बहुत सारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें सोशल गिविंग डे की हम बात कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य दानपुण संस्थाओं और सामाजिक कार्य के सहयोग करने के लिए सोशल मीडिया को एक मंच के रूप में बढ़ावा देने और दान जुटाने के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया भी जाता है। और COVID-19 की बात करें तो इसके दौरान सोशल मीडिया का उपयोग एक मंच के रूप में बहुत अधिक हुआ था और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता और अधिक मदद मिली थी। तो श्रोताओं ये तो थी हमारी जानकारियाँ और भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन कार्यक्रम में आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से वापस आते हैं और कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। रैत स्थित बीडीओ कार्यालय परिसर के स्मृति हॉल में उद्योग विभाग द्वारा RAMP योजना के अंतर्गत एक दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें शाहपुर के विधायक तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। कार्यशाला में स्वयं सहायता समूहों, BBA विद्यार्थी तथा MSME इकाइयों से जुड़े लगभग 100 अभिभागियों ने भाग लिया है। इस अवसर पर केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी स्टार्टअप योजना युवाओं के लिए स्वरोजगार का सशक्त माध्यम बन रही है और इससे देशभर में सराहना हो रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं की आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तो श्रोतो, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से रुक करते हैं गीत संगीत की ओर।

श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हमने आपके साथ ढेर सारी जानकारियां साझा की हैं। उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी। इन जानकारियों के साथ चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए। तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, अगर जान का है तो।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मना ही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके।
1: क्या वो पापा जी मान गए?
2: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गए हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना, क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए। तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, आखिर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मना ही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके।
1: क्या वो पापा जी मान गए?
2: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

0: गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से इस बदलते मौसम के मिजाज के साथ आप सभी रख रहे हैं। तो एक फिर से खास जानकारी के साथ आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। हर बार कुछ न कुछ खास हमारी जिंदगी से जुड़ी बातें रहती हैं, जो कि हमारी डेली रूटीन है, लाइफस्टाइल है, उससे जुड़ी बातें, जागरूकता से भरी, सतर्कता से भरी। तो आज के कार्यक्रम में भी बहुत खास बातचीत, बहुत खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज आप सभी के साथ जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी को बता दूं, सुरेश कुमार जी जो कि नरवाना के रहने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सर का और जानते हैं कि आज वो कौन सी ऐसी खास जानकारी है जो आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे रेडियो गुंजन धर्मशाला में, हमारी इस खास बातचीत में। तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताइए कि आप क्या करते हैं, हमारे दोस्तों को अपना परिचय दीजिए।
1: मैडम, मेरा नाम सुरेश कुमार है जी, और मैं ग्राम पंचायत खास नरवाना से हूँ
0: जी।
1: और अभी जो मैं एग्रीकल्चर पे काम कर रहा हूँ, खेती बाड़ी का काम कर रहा हूँ, छोटा सा किसान हूँ, पर यहाँ की खेती छोटी है हिमाचल की। छोटा सा किसान हूँ पर अलग तरीके की खेती कर रहा हूँ, जैसे पोलियोस पे है, बटन मशरूम पे कर रहा हूँ, फूलों पे कर रहा हूँ, ऐसी खेती कर रहा हूँ
0: जी। तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब किस तरह से ये दिनचर्या रहती है आपकी, किस तरह से चुनौतियां आती हैं, या एक सिंपल वे में आपको सारी चीजें मतलब करने में इजी रहता है?
1: पहले तो मैडम ये अलग सा अनुभव था, पर अब तो काफी टाइम हो गया, जैसे 5-6 साल हो गए, तो इसमें अब तो इनकम सोर्सेज जैसे बन गए हमारे पोलियोस वगैरह से
0: जी।
1: तो अब तो अच्छा लगता है कि जैसे खेती करना, पहले तो लगता था कि नहीं यार ऐसे काम डाल दिए, पर नहीं, जैसे पोलियोस वगैरह में है तो अलग प्रकार की खेती कर रहे हैं जिससे हमारी इनकम सोर्सेज जो बन रहे हैं। मैडम यहाँ खेती कम होती तो परिवार चलाने के लिए थोड़ी सी खेती तो अपने लिए करनी पड़ती है, पर एक आधुनिक तरीके से भी खेती कर रहे हैं और एक परंपरागत खेती हमारी जो पहले से चल रही है, जैसे धान की खेती हो, गेहूं की खेती हुई, इसको भी हम साथ में कर रहे हैं, पर आधुनिक तरीके से जो खेती है, जैसे पोलियोस की खेती है, अपना फूलों की खेती है, इसको भी हम साथ साथ में कर रहे हैं, जिससे कि इनकम सोर्सेज वाली खेती भी कर रहे हैं और अपने घर के खर्चे वाली खेती भी कर रहे हैं, जिससे हमें जरूरतमंद चीजें मिल सकें
0: जी। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने जाना कि सर ने बताया कि ये पॉली हाउस में जो है खेती कर रहे हैं, फूलों की खेती भी करते हैं, और इससे जो है इन्हें इनकम सोर्सेज का भी एक हेल्प जो है वो मिल रही है। खेती की बात, क्योंकि आज के समय में सर हम देखते हैं कि खेती से लोग जो है अपनी एक तरह से जो है इंटरेस्ट को कम कर रहे हैं
1: जी।
0: लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत का काम है और बस फटाफट से, जो पहले खेती करते थे हम, बहुत मेहनत किया करते थे बैलों के सहारे से, लेकिन अब उन्हें भी आवारा छोड़ दिया गया है और खेती का काम कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्यों ऐसा लगा कि आम खेती से आपको पॉली हाउस की तरफ जाना चाहिए?
1: मैंने तो साधारण सी बात है कि आधुनिकीकरण तो होगा अभी तक
0: जी,
1: तो स्वाभाविक है कि जब आधुनिकीकरण हुआ है तो बैल तो अब सड़क पे आएगा
0: जी,
1: क्योंकि बैल की जगह छोटे वाले ट्रैक्टरों ने ले लिए, जैसे पावर वीडर वगैरह ने ले लिया, तो आधुनिकीकरण से खेती का जो है लगाने का तरीका, जो समय यानी बचा भी है लोगों का, जो खेती पहले की जाती थी बैलों के द्वारा, उसमें टाइम लगता था, ठीक है, तो अब जो खेती है उसमें इतना टाइम नहीं लगता है आधुनिकीकरण से, जैसे अभी सारी औजार जो है मशीनरी आ गए हैं, तो उसमें वो चीजें सारी आज की टाइम समय को बचा रही हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो समय बच रहा है, पर फिर भी लोग खेती छोड़ रहे हैं, एक्चुअली इनकम सोर्सेज बहुत कम है खेती से, जो इनकम है परिवार चलाने के लिए तो वो बहुत कम है, पर लोग उसको सही तरीके से, पुराने परंपरागत तरीके से कर रहे हैं, अगर नए तरीके से करेंगे तो वहां से जब उनकी इनकम शुरू होगी तो वो खेती फिर दोबारा करने लगेंगे, पर इसमें दिक्कत ये आ रही है कि बच्चों को जानकारी नहीं है
0: जी।
1: तो हम चाहते हैं कि गांव में छोटी छोटी किसी भी लेवल से जैसे एक मीटिंग्स वगैरह कराई जाएं, बच्चों को उसके बारे में समझाया जाए, बताया जाए, कुछ एक लोग जो है वो खेती से निकले, जैसे हम निकले हैं, हमें भी ऐसे ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कुछ ट्रेनिंग्स दी गई थी, मैंने पोलियोस की ट्रेनिंग ली थी कृषि पालनपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से
0: जी।
1: उसके बाद मैंने मशरूम की ट्रेनिंग की थी कांगड़ा विश्वविद्यालय के अंदर से, तो वहां से हमें पता लगा कि इन चीजों से भी इनकम सोर्सेज बन सकते हैं, तो छोटे से कमरे में मैंने मशरूम का काम शुरू किया था, तो जब इनकम शुरू हो गई तो पता लग गया कि ये चीजें यहाँ से आ सकती हैं। जब पैसा आना शुरू हो जाएगा तो लोग वहां की तरफ चलेंगे,
0: इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा,
1: तो खेती छोड़ रहे हैं लोग क्योंकि वहां से इनकम नहीं आ रही होगी।
0: तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब एक आम खेती से पॉली हाउस की तरफ जाना, या ये ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए आपको मतलब किसी ने सजेस्ट किया, या किस तरह से ये आपका मतलब सफर रहा?
1: मैंने मैडम एक बार यूट्यूब में एक वीडियो देखा था
0: जी,
1: सोलन के फार्मर हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में आए हुए थे
0: जी,
1: तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों ने उसका वीडियो बनाया था और उसको यूट्यूब पे वगैरह पे शेयर किया। इसको भी हम साथ में कर रहे हैं, पर आधुनिक तरीके से जो जो खेती है, जैसे पोलियोस की खेती है, अपना फूलों की खेती है, इसको भी हम साथ साथ में कर रहे हैं, जिससे कि इनकम सोर्सेज वाली खेती भी कर रहे हैं और अपने घर के खर्चे वाली खेती भी कर रहे हैं, जिससे हमें जरूरतमंद चीजें मिल सकें।

0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी ने जाना कि सर ने बताया कि ये पॉली हाउस में जो है खेती कर रहे हैं, फूलों की खेती भी करते हैं और इससे जो है इन्हें इनकम सोर्सेस का भी एक हेल्प जो है वो मिल रही है। खेती की बात, क्योंकि आज के समय में सर हम देखते हैं कि खेती से लोग जो है अपनी एक तरह से जो है इंटरेस्ट को कम कर रहे हैं
1: जी।
0: लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत का काम है और बस फटाफट से, जो पहले खेती करते थे हम बहुत मेहनत किया करते थे बैलों के सहारे से, लेकिन अब उन्हें भी आवारा छोड़ दिया गया है और खेती का काम कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्यों ऐसा लगा कि आम खेती से आपको पॉली हाउस की तरफ जाना चाहिए?
1: मैंने तो साधारण सी बात है कि आधुनिकीकरण तो हुआ अभी तक
0: जी,
1: तो स्वाभाविक है कि जब आधुनिकीकरण हुआ है तो बैल तो अब सड़क पे आएगा
0: जी,
1: क्योंकि बैल की जगह छोटे वाले ट्रैक्टर ने ले लिया है, जैसे पावर वीडर वगैरह ने ले लिया है। तो आधुनिकीकरण से खेती का जो है लगाने का तरीका, जो समय यानी बचा भी है लोगों का, जो खेती पहले की जाती थी बैलों के द्वारा उसमें टाइम लगता था, ठीक है, तो अब जो खेती है उसमें इतना टाइम नहीं लगता है आधुनिकीकरण से। जैसे अभी सारी औजार जो है मशीनी आ गए हैं, तो उसमें वो चीजें सारी आज की टाइम समय को बचा रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो समय बच रहा है पर फिर भी लोग खेती छोड़ रहे हैं। एक्चुअली इनकम सोर्सेज बहुत कम है खेती से, जो इनकम है परिवार चलाने के लिए तो वो बहुत कम है, पर लोग उसको सही तरीके से पुराने परंपरागत तरीके से कर रहे हैं। अगर नए तरीके से करेंगे तो वहां से जब उनकी इनकम शुरू होगी तो वो खेती फिर दोबारा करने लगेंगे। पर इसमें दिक्कत ये आ रही है कि बच्चों को जानकारी नहीं है
0: जी।
1: हम चाहते हैं कि गांव में छोटी छोटी किसी भी लेवल से जैसे एक मीटिंग्स वगैरह कराई जाएं, बच्चों को उसके बारे में समझाया जाए, बताया जाए। कुछ एक लोग जो हैं वो खेती से निकले, जैसे हम निकले हैं, हमें भी ऐसे ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट

0: एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कुछ ट्रेनिंग्स दी गई थी। मैंने पोलियो की ट्रेनिंग ली थी कृषि पालनपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से।
1: जी
0: उसके बाद मैंने मशरूम की ट्रेनिंग की थी कांगड़ा विश्वविद्यालय केंद्र से। तो वहाँ से हमें पता लगा कि इन चीज़ों से भी इनकम सोर्सेज बन सकते हैं। तो छोटे से कमरे में मैंने मशरूम का काम शुरू किया था। तो जब इनकम शुरू हो गई तो पता लग गया कि ये चीज़ें यहाँ से आ सकती हैं। जब
1: जी
0: पैसा आना शुरू हो जाएगा तो लोग वहाँ की तरफ चलेंगे।
1: इंटरेस्ट बढ़ता
0: बिल्कुल,
1: जाएगा
0: तो
1: से।
0: खेती छोड़ रहे हैं लोग क्योंकि वहाँ से इनकम नहीं आ रही लोगों को।
1: तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब एक आम खेती से पॉली हाउस की तरफ जाना, या ये ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए आपको मतलब किसी ने सजेस्ट किया, या किस तरह से ये आपका मतलब सफर रहा?
0: मैंने मैडम एक बार यूट्यूब में एक वीडियो देखा था।
1: जी
0: सोलन के फार्मर हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में आए हुए थे।
1: जी
0: तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों ने उसका वीडियो बनाया था और उसको यूट्यूब पे वगैरह पे शेयर किया था। मैंने वहाँ से देखा था। तो वहाँ पर थे डॉक्टर देशराज सर। तो उन्होंने वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी। तो उसमें मैंने जब यूट्यूब में देखा उनका नंबर ढूंढा मैंने। फिर उनसे जब मैंने तालमेल किया तो पता लगा मुझे कि यहाँ से मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे फर्स्ट ट्रेनिंग जो पोलियो की कराई थी यूनिवर्सिटी में।
1: जी
0: तो सेकंड कराई थी उन्होंने हमारी मशरूम के
1: मशरूम
0: खेते।
1: जी।

0: सर आप हमारे दोस्तों को ये बता सकते हैं कि एक आम खेती और पॉली हाउस की खेती में क्या अंतर रहता है?
1: बहुत ज्यादा अंतर है खेती में। जैसे आप जो पॉली हाउस में खेती करते हो, उसमें मैडम ऐसा होता है कि वो खेती जो है, एक तो उसको 3 या 4 महीने में आप कवर कर सकते हैं। ऊपर से उसमें मौसम की भी थोड़ी सी ये रहती है कि जैसे टेम्परेचर वगैरह जो उसमें मेंटेन किया जा सकता है। और खेती का ऐसा होता है कि जैसे पॉली हाउस सीट के नीचे आप बारिश से, धूप से, किसी भी तरीके से अपनी खेती को बचा सकते हैं। तो बचाने से होता है कि आप उसमें उसको बढ़ा ही सकते हैं, यानी जो 2 टर्म में खेती है उसको 3 या 4 महीने सकते हैं, क्योंकि 4 महीने में एक फसल वहां से निकल जाती है आराम से
0: जी।
1: तो उससे आप अगर आप उसके जो जैसे पॉली हाउस में जो आप शिमला मिर्च लगाते हैं, रेडी येलो शिमला मिर्च लगाई जाती है, अपनी खीरे की खेती की जाती है, तो ये सारी इनकम सोर्सेस खेतियां हैं, तो उसको पॉली हाउस से आप ले सकते हैं
0: जी। बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी जान रहे हैं कि पॉली हाउस की खेती किस तरह से की जा सकती है और अपनी इनकम सोर्स को खेती के माध्यम से कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक आम खेती से पॉली हाउस की तरफ हम कैसे जा सकते हैं ट्रेनिंग्स के माध्यम से और फिर अपना बिजनेस जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर जैसे कि आपने ये सेटअप शुरू किया पॉली हाउस का, तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ी, किस तरह से आपने मतलब अपने ही हिसाब से किया या लोन वगैरह लिया या प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प की गई, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प की गई, किस तरह से आपने इस सेटअप को रेडी किया?
1: मैडम जैसे हमें कोई भी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जब सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग कराई जाती है, जैसे हॉर्टिकल्चर से कराई जाती है, एग्रीकल्चर से कराई जाती है, उसमें जब भी ट्रेनिंग कराई जाती है तो उसमें मेरे बोलने का मतलब ये था कि पहले मैंने आपको बोला वो ट्रेनिंग से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो वहां पे जब हमें जो स्ट्रक्चर को लगाया जाता है या कुछ उसमें, तो उसमें हर एक चीज को बताया जाता है, जैसे उसमें आपका लोन कैसे मिल सकता है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें कितने परसेंटेज से आपको पैसा मिल सकता है, कौन कौन सी स्कीम किस किस तरीके से है, वो हर एक स्कीम में बेनिफिट जो है वो उस ट्रेनिंग के द्वारा बताया जाता है डिपार्टमेंट का, क्योंकि अलग अलग तरीके हैं सारी चीजों के
0: जी।
1: जैसे पोलियो पे अलग 80-20 की स्कीम से भी मिलते हैं पोलियो, 85-15 की स्कीम में भी फ्लोरिकल्चर के मिलते हैं जो, और अपने जैसे आपने बोरवेल वगैरह का उसमें अलग स्कीम होती है, जैसे मैंने जब बोरवेल लगाया था तो मुझे 90,000 सब्सिडी मिली थी, बाकी मैंने अपना पैसा लगाया था। गवर्नमेंट की हर स्कीम है उसमें जो ऐड हुई है, जब वैसे ही आप फूलों की खेती करते हो उसमें भी गवर्नमेंट अनुदान देती है, जैसे कार्नेशन के लिए भी अनुदान देती है, जरबेरा को फूलों के लिए भी अनुदान देती है, जिसको पॉली हाउस में लगाया जा सकता है। पॉली हाउस में अलग से अनुदान मिलेगा और जो पॉली हाउस वगैरह लगाए जाते हैं प्लास्टिक सीट के, उसमें अलग से अनुदान दिया जाता है। इन सभी चीज़ों पर अनुदान है। आप पावर बिल्डर लेते हैं खेत को जोतने के लिए, तो उस पर भी अनुदान दिया जाता है। और बैंक की तरफ से भी, जैसे बैंक की तरफ से KCC किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं, 3 लाख तक आज की डेट में नॉर्मल कोई भी गवाही के बिना उसको आप बना सकते हैं, पहले 1,60,000 रुपये भी नॉर्मल किसान को मिल जाता है। तो ये चीज़ें आज की डेट में लोगों को पता नहीं है, तो हम चाहते हैं ट्रेनिंग से द्वारा इन लोग या गाँव में मन एक छोटा सा मंच करके इनको सामने किया जाए, जिससे कि लोग खेती के लिए आगे आए
0: जी। बिल्कुल, तो जैसे कि हमने पहले भी बात की कि यहाँ अगर हम कांगड़ा की बात करें या हिमाचल की ही बात करें, तो मैक्सिमम लोगों का जो है ज्यादातर एफर्ट्स आम खेती की तरफ ही रहते हैं, क्योंकि अपनी जमीनें होती हैं, तो ज्यादातर यही होता है कि हम अपनी जमीनों को अच्छे से उपजाऊ बनाए। तो आपको अपने एरिया, अगर हम नरवाना की बात करें, तो वहां पे और भी आपके आसपास मतलब ऐसी कुछ मोटिवेशंस है या आपकी ही ये पहल थी आपके गांव में?
1: मैम जब से मैंने काम शुरू किया तो मुझे लगता है कि ये तो पहला आदमी मैं ही गांव में ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गांव में तो 300-400 कनाल भूमि है मेरे गांव की अपनी जो है, जो सभी की है मिलके, तो उसमें आज तक पानी नहीं है।
0: अच्छा,
1: पानी नहीं है, कुल्ले नहीं है।
0: Okay.
1: क्योंकि पहले कैंट वोड एरिया था
0: जी,
1: पंचायत थी नहीं, अभी बनी है,
0: नई
1: नई पंचायतें बनी है, अब चलो आगे देखते हैं क्या होता है। पर वो चीजें कुल्ले बंद हो गई थी, तो मैक्सिमम लोगों ने वहां पे भी खेती करना छोड़ दी थी। पर कुछ टाइम से जब मैंने भी ये किया, काम शुरू किया है, तो मेरे पास ऐसे गाँव में थी नहीं मोटिवेशन कोई चीज, पर जब मैंने किया तब लोग थोड़ा करने लगे हैं, खेती को बचाने लगे हैं कि अब ये बचेगी तो इससे पैसा आ सकता है, इस तरीके की चीजें हो रही है अभी,
0: तो
1: हमारे आसपास नहीं थी पहले।
0: पहले नहीं थी, तो आपने कब से ये शुरू किया है?
1: मुझे 6-7 साल हो गए इसके लिए ना।
0: 6-7 साल, तो कितना डिफरेंस अभी तक आपको लगा?
1: पहले ऐसा था मैडम कि बाहर काम करता था मैं, तो मुझे कम से कम महीने में 7-8 या 10 हजार तक सैलरी मिलती थी। बाहर ही काम किया, लोकल एरिया में काम किया
0: जी।
1: पर आज की डेट में मैं दिहाड़ी नहीं करता मैडम, आज की डेट में मैं अपने फोलियोस वगैरह में काम करता हूँ। जितनी मैं कम 100 से 22 से निकालता हूँ, तो आज की समय में जो परिवार है मेरा ठीक है, यानी गुजर बसर अच्छी चली हुई है पहले से।
0: तो जैसे कि आपने बताया कि आप फूलों की खेती करते हैं, तो आप कौन कौन से किस किस प्रकार के फूल जो है वो उगाते हैं और उसे फिर मतलब आप सेल करते हैं, या किस तरह से आपका वो बिजनेस रहता है?
1: मैंने मैडम शुरू की थी पहले खेती अपने गेंदा फूल की।
0: ओके।
1: तो इसको ओपन फील्ड में लगाया था क्योंकि मेरे पास पोलियोस नहीं थे
0: जी।
1: तो मैंने इसको शुरू किया था ओपन फील्ड में, लगाया था इसको तो ओपन फील्ड में। दीपावली वगैरह के टाइम पे इसका काफी
0: ज्यादा मांग होती है,
1: मांग होते जी। तो मैंने वहां लगाया था, तो उसमें से मेरे को अच्छी इनकम निकली थी। फिर मैंने इसको फिर उसको पोलियोस पे ले गया मैं। पर पोलियोस में जो लगाने से इसकी जो बाहर से इसकी इनकम बराबर ही एवरेज बराबर आ रही थी, तो पोलियो उसके छोड़ को इसके मैंने बाहर ही किया। जैसे बरसात के दिनों में इसको हम पोलियो के अंदर ले जाते हैं,
0: अच्छा।
1: पोलियो के टनल के अंदर ले जाते हैं, जिससे कि बरसात के दिनों में क्योंकि बाहर तैयार नहीं होता, इसमें पानी भर जाता है। तो वहां से शुरू किया था मैंने। जैसे फिर फूलों की खेती से जुड़ने सबसे बड़ा कारण ये था कि मैंने गेंदे की खेती शुरू की। उसके बाद जब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मैंने सोलन यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ली, नोनी यूनिवर्सिटी में, तब मुझे वहाँ पे कार्नेशन और जयवेरा के बारे में बताया गया। तो अभी हम जो पोलियोस्टिन में कर रहे हैं वो जयवेरा और कार्नेशन कर रहे हैं
0: जी। तो मैं एक बात अपने दोस्तों तक ये भी पहुंचाना चाहूंगी कि जैसे ये जो हम पोली हाउस अगर स्टार्ट करना भी चाहें इस खेती को, तो इसमें कोई भी कर सकता है, मतलब या कुछ इसमें रूल्स वगैरह होते हैं या कुछ प्रोसीजर होता है इसका?
1: नॉर्मल सब जो आदमी खेती कर रहा है जिसके पास खेत है, वो बागवानी डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आजकल तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो इसमें है नहीं अभी, पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में पोलियोस किया, तो इसमें नॉर्मल अपनी एक जमीन का पर्चा ले जा सकता है और उसमें वो देख सकते हैं कितनी जमीन है और कितने, उसी हिसाब से वो मिल जाएगा। नॉर्मल किसी भी आदमी को मिल जाता है, किसी भी किसान को मिल जाएगा वो
0: जी।
1: ऐसा
0: तो आपके आसपास जो लोगों का सहयोग है आपके लिए वो किस तरह से रहता है?
1: अब तो लोग भी सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी
0: जी।
1: आजकल तो करते हैं सहयोग, नहीं ये काम चल सकता है।
0: तो जैसे आपने कहा कि पानी की व्यवस्था नहीं है, कूलों की व्यवस्था नहीं है, तो आप पोली हाउस में पानी की अरेंजमेंट कैसे करते हैं? मतलब वहाँ भी पौधों के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए
1: जी।
0: तो वहाँ पे आप किस तरह से वहाँ पानी पहुँचाते हैं फिर?
1: मैडम मैंने आपको पहले बताया कि मैंने बोरवेल लगवाया हुआ, वो भी सरकार के अनुदान से लगा हुआ मेरा, तो उसमें 90,000 सब्सिडी मिली थी मुझे।
0: अच्छा, सब्सिडी का प्रावधान भी इसमें किया जाता है।
1: हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जब मैंने पोलियो लगवाए थे, तो मैंने उनसे एक रिक्वायरमेंट की थी, सर कि मेरे पास पानी की कमी है, पानी नहीं है वहाँ पे, तो उन्होंने स्पेशली मुझे बोरवेल दिया था उसमें, क्योंकि आप इसमें जो पोलियो है इसमें आप ड्रिप इरीगेशन से पानी दे सकते हैं, तो इसमें आपको जो है मोटर के थ्रू ही पानी देना पड़ेगा, तो मैंने बोरवेल करवाया अपने
0: जी
1: सरकार।
0: तो सब्सिडी का क्या इसमें वो रहता है, रूल रहता है, मतलब किस तरह से दी जाती है या किस तरह से अगर लोग करें तो उन्हें थोड़ा सा नॉलेज हो जाए उस बारे में?
1: जैसे मैंने आप कोई भी काम करना चाहेंगे, जैसे पोलियो पे करना चाहेंगे काम, तो जैसे आप डिपार्टमेंट में अपनी जो रिक्वायरमेंट रखेंगे, तो आपको वो पोलियो का जैसे बताएंगे कि इतनी सब्सिडी इस पोलियो में, कोई MIDH में लगते हैं, पुष्पक्रांति में लगते हैं, ऐसे लगते हैं पोलियो, तो वो तभी बता देते हैं कि आपको इतने परसेंटेज पे सब्सिडी मिलेगी और इस तरीके से आपको, यानी इतने इतने दिनों बाद सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि सरकार के बजट पे डिपेंड करता है कि सरकार के पास बजट कितना है
0: जी।
1: पर अप्रूवल तभी मिलेगी आपको, ऑनलाइन करेंगे आप तो अप्रूवल तभी मिलेगी जब सरकार डिपार्टमेंट के पास बजट होगा, तो वो खुद ही डाल देते हैं सब्सिडी वगैरह उनके अकाउंट में।

0: जी, तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी ने जाना और समझा इस बात को कि अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तब भी हमें ये हेल्प की जाती है, बोरवेल आप लगवा सकते हैं और उसके माध्यम से जो है अपने पौधों को पानी की व्यवस्था जो है वो कर सकते हैं पूरी तरह से, और सब्सिडी का भी प्रावधान जो है इसमें किया जाता है। तो सर जैसे कि हम पॉलीहाउस की खेती की बात कर रहे हैं तो आपको 6-7 साल हो गए इस बिजनेस में इस काम को करते हुए, तो हमारे दोस्तों का सवाल ये भी हो सकता है कि जैसे हम पॉलीहाउस में तापमान और नमी को कंट्रोल करना कितना जरूरी है पौधों के लिए, कैसे कर सकते हैं, और अगर ना किया जाए तो उससे क्या क्या नुकसान जो है वो हो सकते हैं।
1: तापमान और नमी को तो मैंने कंट्रोल करना ही पड़ता है क्योंकि ज्यादा तापमान से भी पौधे खराब होते हैं, मुरझा जाते हैं। तो जो पॉलीहाउस लगे होते हैं उसमें एक फैन लगे होते हैं, बड़े फैन लगे होते हैं और फोगर सिस्टम लगा होता है उसमें, जैसे आप उसको फोगर को ऑन करेंगे तो पानी धुएं की तरह ये होगा, तो उसमें टेम्परेचर वगैरह मीटर जो हम लगे होते हैं उसमें
0: जी।
1: तो आप उसको टेम्परेचर मीटर पे जैसे आप पंखे ऑन करेंगे फोकर को ऑन करेंगे तो वो जो टेम्परेचर मीटर है उस पर आप अपना पूरा सिस्टम देख सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पे मैंने इसको पोलियोस को रखना है
0: जी।
1: तो ये चीजें जो पोलियोस लगते हैं इनमें ऑलरेडी होती हैं, पर थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए कि इसमें कौन कितने टेम्परेचर पे हमने अपनी फसल को रखना है
0: जी।
1: अगर उस तरीके से चलेंगे ट्रेनिंग के माध्यम से चलेंगे तो वो सारी चीजें वहां पर बताई जाती हैं कि किस टाइम पे कितने तापमान जो पे इसको रखना है, तो उसमें जो मीटर लगा उस पे लग जाता है पता कितने टाइम, तो नॉर्मली हो जाता है वो,
0: मतलब वो ट्रेनिंग के दौरान जो है वो सारी चीजें बताई जाती है जी। तो बिल्कुल दोस्तों ट्रेनिंग को अटेंड करना बेहद जरूरी है हमारे लिए, विदाउट ट्रेनिंग हम किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते विदाउट प्लानिंग के। तो सर अगर हम इस बात का ध्यान ना दें या गलती से ना दिया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है?
1: मैडम जो पोलियोस है ना ये कीड़ों के लिए 5-स्टार होटल है
0: जी।
1: तो ये अगर आप इसको देखेंगे नहीं तो कोई भी कीड़ा अगर इसमें चला जाता है तो आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये खत्म हो जाएगा
0: जी,
1: क्योंकि पोलियोस पे आपको परमानेंट निगरानी रखनी पड़ेगी, उसको छोड़ के

0: आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जाएंगे तो घर के किसी आदमी को बताएंगे जो आपकी उस ट्रेनिंग का हिस्सा बन
1: पार्ट
0: चुका हो,
1: बन चुके,
0: या अपने से ही आप आपस में बातचीत से ही हिस्सा बन चुका हो।
1: उनको समझा दिया
0: समझा,
1: हो आपने।
0: तो उस तरीके से कर सकते हैं। अगर नमी नमी की भी बात करें तो इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा होता है सारा, तो पानी भी उस तरीके से छोड़ा जाता है पौधे के जमीन से स्तर पे, खुद पता लग जाता है कितना पानी देना है कितना नहीं देना है,
1: जी
0: क्योंकि ये चीजें उसमें ऑलरेडी पहले से ऐड की हुई है डिपार्टमेंट ने। तो ये जब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगता है तो उसमें पानी बूंद बूंद सिंचाई है, आप समझ रहे होंगे,
1: जी
0: तो उसमें बूंद बूंद सिंचाई से पानी इतना ज्यादा नहीं होगा, पर तापमान का खासकर इसमें ये होता है कि तापमान इसमें बिल्कुल आपको मेंटेन रहना पड़ेगा। जैसे आजकल धूप ज्यादा हुई है
1: जी
0: तो फूल तो वैसे मर जाएगा, फूल तो टिकेगा
1: बिल्कुल
0: नहीं, फूल तो वैसे नहीं दिखता है।
1: जी
0: तो ये चीजें आपको टोटल ये है, आपको ट्रेनिंग के माध्यम से जो पता लगेगा कि टेम्परेचर मेंटेन करने से करना है, अगर वो आपको जानकारी होगी तो आपका पोलियो का भी नुकसान नहीं रहेगा।
1: जी
0: अगर उसको नहीं देखेंगे आप तो वो पोलियो से 1 हफ्ते के अंदर ही खत्म हो जाएगा।
1: जी तो सर अभी आप जो है अपने पॉली हाउस में कौन कौन सी सब्जियां जो हैं वो उगा रही हैं?
0: अभी मैडम हम मैंने रेड येलो शिमला मिर्च लगाई हुई है इस वक्त, एक में कार्नेशन लगा हुआ है और एक में जरबल लगा हुआ है। अगर इसमें कोई कमी रह जाएगी पोलियोस में तो पोलियोस खत्म हो जाएगा, पर यह है कि कमी रहती नहीं है, क्योंकि कम टाइम पे आपने पानी देना है तब आपको कम टाइम चाहिए, जरूरी नहीं है कि भाई खड़े रहना है, आप मोटर ऑन कर देंगे 10 मिनट, यहाँ पर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है वहां खड़े, पर आपको तापमान टेम्परेचर मेंटेन करके चलना पड़ेगा उसका।
1: जी सर अभी आपने बात की कि किसी तरह से अगर कमी रह जाए तो मतलब किस तरह की कमी जो है वो देखने को मिलती है, मतलब कोई हमारी
0: हाँ
1: नजरअंदाजगी या?
0: बिल्कुल, नजरअंदाजगी सबसे बड़ी, अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
1: जी
0: अगर आपको छोटी सी छोटी प्रॉब्लम लगती है तो उसको आपको बिल्कुल गहराई से देखना पड़ेगा उसको।
1: जी बिल्कुल। तो सर जो आप ये सब्जियां वगैरह उगाते हैं या फूल वगैरह उगाते हैं तो आपके मतलब लिंकेजेस किस तरह से आपने क्रिएट किए हैं? आप मतलब किसी शॉप के साथ या गांव में ही जो है वो सेल हो जाती है, किस तरह से आपको इसमें मेहनत करनी पड़ती है?
0: मैडम मैंने जो आज तक जितना काम किया वो मैंने गांव में, रेस्टोर गांव में, जैसे कि मेरे योल आर्मी है
1: जी
0: साथ में
1: जी
0: तो काफ़ी बड़ा हब है हमारे लिए आर्मी
1: बिल्कुल
0: का, तो मैक्सिमम चीज़ें हमारी यहीं बिक जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा किराएदार होना भी यहाँ पर बड़ी बात है,
1: जी
0: और योल ऐसी जगह है जहाँ पे जगह जगह के लोग जमीन लेके रह रहे हैं, तो हम इनको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो जितना सा आप हम कर पा रहे हैं यहाँ छोटे स्तर पे वो सारा अभी तक तो यहाँ एडजस्ट हो जा रहा है,
1: जी
0: पर अगर कुछ लोगों के साथ हम टाइप पे, किसानों के साथ टाइप पे हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं 3-4, हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास है कुछ बढ़ेगा तो हम अपनी एक वैन वगैरह रख के कुछ करके उसको दिल्ली वगैरह में सेल कर सकते हैं।
1: ओके मतलब दिल्ली वगैरह तक आप
0: जी
1: भेजने की कोशिश
0: जी
1: करना चाहिए। अच्छा फूलों का आप किस तरह से करते हैं, मतलब फूल जो आप तरह तरह के उगाते हैं तो उसका यूज आप किस तरह से, मतलब उसे भी आप शॉप्स वगैरह में या बुके वगैरह या किस तरह से आप उसको करते हैं?
0: अभी तो मैडम हमारी शॉप्स हैं जैसे यहाँ शीला चौक में है, कांगड़ा वगैरह में शॉप है,
1: जी
0: तो जो कट फ्लावर है वो तो अभी वहीं चला रहता है जितना हमारे पास हो रहा है,
1: जी
0: वो तो यहाँ एडजस्ट हो रहा है। गेंदा फूल मंदिर वगैरह में लग जाता है,
1: मंदिर
0: वो
1: जी
0: तो यहाँ लग ही जाता है, वो तो जितना मर्जी उगा लो यहाँ लग जाएगा।
1: जी
0: बाकी कट फ्लावर अभी तक जो यहाँ पर उगा रहे हैं, जो फार्मर उगा रहे हैं, वो यहीं एडजस्ट हो जा रहा है, उसको वहाँ यहाँ वहाँ भागने की जरूरत है, थोड़ा बहुत हम अपनी गाड़ियाँ सजाते हैं शादी वगैरह में, बुके वगैरह बनाते हैं, तो हमारा जो इतना सा है वो एडजस्ट हो जाता है।

0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए कितने एक तरह से मतलब कि पॉलीहाउस की खेती से हम बहुत तरह की जो है चीजें अपने साथ लेकर चल सकते हैं और एक इनकम सोर्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। कहते हैं स्किल्स का होना जरूरी है, काम की कमी नहीं होती है। काम हमें तभी नहीं दिखता जब हम अपने हुनर को पहचान नहीं पाते हैं, खुद की अहमियत को हम जान नहीं पाते हैं। तो फिलहाल आज के समय में जो है वो खेती को थोड़ा सा बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं लोग नजरअंदाज भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मॉडर्न तरीके से एक अलग नजरिए के साथ जो है लोग खेती के साथ ही अपनी आजीविका को बढ़ा भी रहे हैं। तो वही नजरिए और वही जो तरीके हैं हमें अपनाने हैं। तो उसी के साथ जो है हम बदलते समय के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारे दोस्तों तक ये पहुंचाना चाहूंगी कि ये पॉली हाउस खेती जो आप कर रहे हैं इसके क्या-क्या फायदे हैं।
1: मैडम, इसके फायदे हैं कि मैंने पहले बताया आपको, इसकी क्रॉप जो है वो एक जैसे आप कोई भी आप जैसे शिमला मिर्ची लगाते हैं, इसमें जैसे कहते हैं रेड येलो लगती है, उसका रेट 200 से 250 रुपया रहता है,
0: जी
1: ठीक है। और जो एक पॉली हाउस में जो खीरा लगाया जाता है उसका एक अपना रंग ही अलग ही रेट रहता है, जो एक समय पर एक बराबर ही रहता है, जैसे 30 से 40 रुपये किलो बिकता ही मिलता है। तो इसमें जो जो खेती की बनावट है यानी जो फ्रूट की बनावट होगी वो इतनी अच्छी होगी कि उसमें आप उसको लोग खुद लेना चाहेंगे। तो ये चीजें उसमें निकल सकती है, बाहर की खेती से निकल सकती है जो बोली उसमें निकलेगी।
0: जी। और सर किसी वजह से या किसी कारण जो है, अगर माना हमने बहुत सारी खेती पॉली हाउस में तैयार कर दी और किसी वजह से वो अगर नहीं हो पाई या कुछ नुकसान हो गया, तो उसमें भी कोई हमारी हेल्प होती है या कुछ होता है मतलब उसमें।
1: जी मैम, ये अगर कोई प्रॉब्लम आती है जैसे पीछे डिजास्टर हुआ इतना ज्यादा, तो
0: जी
1: उसमें क्या होता है पूरी उसमें पानी पड़ गया, भर गया था,
0: जी
1: तो सरकार का उस पे भी अनुदान है। अगर वहाँ पे अगर हम जो डिपार्टमेंट में बताएं वो कमेटी बना के भेजते हैं एक छोटी सी, वो देखते हैं कितना नुकसान हुआ, तो उस पे भी अनुदान वगैरह गवर्नमेंट जो करती है।
0: जी
1: खेती पे गवर्नमेंट का आज की डेट में सबसे ज्यादा योगदान है।
0: जी तो बिल्कुल दोस्तों, नुकसान होने पे भी आपकी हेल्प जो है वो जरूर की जाती है। तो सर बहुत ही खास जानकारी जो है आपने हमें हमारे जो है दोस्तों तक पहुंचाई है और अपना बहुत ही कीमती समय आपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के लिए निकाला है। तो जाते जाते आप सभी दोस्तों को या अपने गांव वासियों को इस पहल को करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें प्रेरित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे कि पॉली हाउस खेती हो चाहे कोई भी खेती हो आप उसके लिए क्या कहेंगे।
1: मैं तो सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे भी काम करना है ठीक है करो, पर थोड़ा सा ध्यान अपनी खेती पे दो, क्योंकि वहां से भी जो इनकम सोर्स जाके बन सकते हैं। अगर कुछ लोग 2 घंटे भी अगर सवेरे शाम अगर 2-2 घंटे भी काम करेंगे तो वहां से इनकम सोर्स निकलेंगे निकलेंगे। तो जब 2 घंटे हमने भी ऐसे किया है, ठीक काम नहीं छोड़ा एकदम, पर धीरे धीरे किया तो आज हमारी इनकम सोर्सेज वहां से बनी हुई है। जब इनकम सोर्सेज बन जाते हैं कहीं से तो उस ऑफिस में जाने का दिल करता है, तो ये एक ऑफिस है हमारे लिए, ठीक। हम तो सवेरे उठ के ऑफिस में जाते हैं अपने, हम वैसे नहीं सोचते कि खेतों में जा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, एक लगाव सा हो जाता है ना कि एक फैमिली मेंबर की तरह ही हो जाती है सारी चीजें, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, जब हम मन लगाकर और ईमानदारी के साथ किसी भी काम को करते हैं तो उसमें सच में जरा भी हमें महसूस नहीं होता कि हम कुछ नहीं कर रहे, हमें ऐसा लगता है कि यही हमारी दुनिया और यहीं से हमारे लिए सब कुछ है। तो बस यही लगन और जुनून जो है हर एक युवा में भी होना चाहिए, हर एक इंसान में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो बहुत ही खास ये बातचीत आप सभी ने एंजॉय की है दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका, और हमारे साथ आज की इस खास बातचीत में जुड़े थे नरवाना खास से सुरेश सर जी। तो उम्मीद है कि आप सभी इस बात पे जरूर गौर करेंगे, जरूर ध्यान देंगे और पॉली हाउस खेती के बेनिफिट्स को समझेंगे, जानेंगे और इसके और जो है आगे बढ़ेंगे। तो अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को इस बातचीत को संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नए मेहमान के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई जीवंत क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में बताया कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि ये निर्यात को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये समझौते एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसान तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये समझौता एक परिवर्तनकारी कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: This agreement would open up new opportunities.
2: यह समझौता भारतीय उद्योग जगत के लिए सामान और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। नवाचार और प्रतिभा की आवाजाही में सहयोग से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: Both the countries, India and the United Kingdom.
0: वहीं एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि ये समझौता भारत की मुक्त व्यापार समझौते यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जोड़ता है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजी की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि अभियान के उद्देश्य पूरे हो गए हैं। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज एटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में लगभग 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 372 अंक की वृद्धि के साथ 77,427 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक बढ़कर 24,152 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar.

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना, क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बाबा बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट फाट कंडीशन में रखिए, गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए। तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, आखिर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मना ही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों छेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
1: क्या वो पापा जी मान गए?
2: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो कुंजन धर्मशाला तो ते मैं थोड़ी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदा ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करते रहो पंजाबी गीत।

श्रोताओ, रेडियो गुंजन धर्मशाला है ते तुसी 91.2 MHz ते बने हुए हो। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। उम्मीद है पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम च तुसी काफी इंजॉय कर रहे हो। तां हुण पेश कर रहे हां प्रोग्राम दा आखिरी पंजाबी गीत।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब,
0: हाँ,
1: एक सेल्फी।
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, फिर
1: ओ यस यस यस, हां सर।
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, अगर जान गए तो।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: बेटी बचाओ देश बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मनाही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान न करें न करने दें।
2: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
3: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
2: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
3: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
2: क्या वो पापा जी मान गए?
3: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना।

कानवी दशमलव 2 MHz पर ए दोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई यो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक श्रोताओं पहले तो तुहां सारे दा ही इस माटी दी महक कार्यक्रम दे

0: सफर च शशिदा प्यार भरा स्वागत है। कनेसी कहने तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कहने जुड़ी चुके होने न, कने नहीं जुड़े न तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर कहने जुड़िया, क्योंकि तो सारे जो ही इंतजार जिड़े से रहेंदे कि कालू दिया दो बजते न कने कालू दिया तो सारे ही इस कार्यक्रम दे सफर कहने जुड़ते न, तो जरूर तो सारी इस सफर कहने जुड़ा कने हाँ इस कार्यक्रम का जड़ा आगाज है से करी लेंदे न, फिर बाकी दिया जड़ा गल्ला न से जरूर तुह तक ले करी आते न, तशो तो कार्यक्रम का आगाज अहाँ करते न कने तो हाँ सारे भी इंजॉय करा इस प्यारे दे गीत जो प्यारी दे फरमाइश जो
1: ये बेचैन अपने वजीरों की बैठ

0: कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये तुहा सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहा सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने आहंदे पहले श्रोता हां कन्ने जुड़ चुके न कर दिन तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी बढ़िया सा, थोड़ा गर्मी बड़ी भारी
0: जी। गर्मी तो बड़ी ज्यादा है जी। तुहां कुथों ते बोला दे कने तुहां दा ना के है जी?
1: आशीर्वाद बारी तो बोल रहे कने ना बंदना देवी है
0: जी। ता बंदना जी, आज कड़ा जेड़ा दिन ने से तुहां दा किस प्रकार चल लिया
1: जी? बढ़िया
0: जी, बढ़िया ही चाहिदा ना जी।
1: हाँ जी
0: जी, नोई ता जी
1: साफ सफाई कीती
0: जी।
1: जी साफ सफाई कीती, साफ कुत्ते सारा काम कीता
0: जी। जी घरे दे काम जेड़ा ने से कदी भी खत्म नहीं होंदे ना जी।
1: हाँ जी
0: जी। ता आज हां जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करनी है से करनी है कि विश्व युवा कौशल दिवस दे बारे च ना जी।
1: जी
0: जी, ता क्योंकि हर दिन आहा वास्ते खास होंदा कने युवा वास्ते भी जेड़ा खास अवसर या हाँ ये बोली सकदे कि हर कोई ए चांदा कि यहाँ अपनी जिंदगी च सफलता जेड़े से जरूर हासिल करना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी। ता वंदना जी, तो हाँ इस कार्यक्रम जो रोज ही सुन दे?
1: हाँ जी बिल्कुल, मुझे रोज अच्छा लगता बड़ा
0: जी। अच्छा अच्छा लगता तो हाँ जो
1: जी
0: जी जी
1: जी।
0: अच्छा कालू दिया दो बजते न कालू दिया तो हाँ इस कार्यक्रम करने जुड़ते ना जी।
1: हाँ जी
0: जी। ता वंदना जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद कर गे?
1: मछलिया पूने लिया जाले जाले भी चरो या मछलिये
0: जी। जरूर एक गीत फरमाइश तो हाँ तक पहुँचा दे जी जुड़ने वास्ते।
1: जी जरूर
0: जी,
1: हाँ जी।
0: बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा
1: जी। थैंक यू
0: जी। ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। दर्शकों तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने। तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाहा करने जुड़ी सकते कने आहा करने गल बात जिड़े से जरूर करी सकते। तो आज यहाँ जिड़ा खास दिन बना देन से बना देन विश्व युवा कौशल दिवस। आज कने दिने दी गल करिए तो 15 जुलाई 2026 का ये दिन है कने हर दिन आहा वास्ते खास होंदा। तो जरूर ये ऊपर आहा गल बात करनी है पर तुह जो पहले लेकर चलते न अगली फरमाइश की ओर, क्योंकि फरमाइशा का जेड़ा दौर है सभी अहां जरूर पूरा करना है कने अहां दे जेड़ा श्रोता न सभी फरमाइशा भी करते न कने इसी कने जेड़ा गीत संगीत है सभी अहां जरूर तिना तक पहुँचाते न। तशतों चलते न कने पहुँचाते ने अगली फरमाइश तुहां तक। तुहां नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पंथी।

सारियंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने दर्शो तो आज हाँ कार्यक्रम च गाल बात करा देन विश्व युवा कौशल दिवस के बारे च दर्शो तो जिड़ा तकनीकी कौशल हैं तिना दा उद्देश्य बनाए रखना या तिना दा जिड़ा यूज है सियाहा किस प्रकार जिड़े इसे करी सकते क्योंकि हर चीज़ का अपना अपना जिड़ा महत्व है से जरूर होंदे कने आज 15 जुलाई जो विशेष रूप पर अहां जिड़े से विश्व युवा कौशल दिवस जिड़े से आज बना देन कने इसी कने तो हाँ सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी सकते कने अहां कने गल बात जिड़े से जरूर करी सकते दर्शो तो गल बात करने वास्ते जिड़ा अहां दा नंबर है सभी जरूर तुहां तक पहुँचाना है क्योंकि नंबर तुहां तक पहुँचे होगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे नंबर है 701-811-7091 ते इस नंबर पर तुहां कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा दर्शो तो इसी कने अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ांदे न कने तुहां सारे जो ही अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न सुनते ने सा प्यारी दिया फरमाइशा जो ये फरमाइश अहां तक पहुँची हो है व्हाट्सएप के माध्यम ने तो जरूर अहां तिने तक ये फरमाइश पहुँचा देन तो हाँ सारी भी इस प्यारी दिया फरमाइशा जो इंजॉय करा कने ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंथी।

0: तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने तुहां सारे ही सुनिया ए प्यारा देया गीत प्यारी देई फरमाइश। तुहां सारे जी पता है कि ये कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है। तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कन्ने जुड़ी सकदे ताशो तो जिंदगी दा जिहड़ा सफर है ना सियां जो हर दिन कोई ना कोई जिहड़ा सीख है से दे करी जांदा है। ताशो तो हाँ कई बार होंदा ना कि अपने चेहरे जो बिल्कुल दिखना जिहड़ा है से शुरू हो जांदे या चेहरे ते खुद जो समझना शुरू हो जांदे पर हाँ कुथी ना कुथी अपने जिहड़ा विचार हैं से कितने की अच्छे रखा दे या अहां दे जिहड़ा अच्छे विचार हैं तिना ने अहां जो लगाव है सही अहां दी खूबसूरती है क्योंकि चेहरे तो हर कुसी दे खूबसूरत होंदे पर अहां दे जिहड़ा विचार हैं से कितने की खूबसूरत हैं क्योंकि इंसान दी जिहड़ा असली पहचान है से सबसे असली जिहड़ा पहचान है से इंसान दी व्यवहार है। अगर अहां अच्छा व्यवहार रखदे न ताई अहां अपनी जिंदगी च सफलता जिहड़े से जरूर पाई लैंदे न क्योंकि हर कोई सफलता दी ओर भागा दे सारे ही सफलता दी ओर भागा दे न अहां भी सफलता दी ओर भागा दे कन तुहां भी सफलता दी ओर जिहड़े से जरूर भागा दे क्योंकि हर दिन हाँ कोई ना कोई जिहड़ा सीख है या कोई ना कोई जिहड़ा अनुभव है सहां जो जरूर मिलता है हर दिन पर सहां पर निर्भर करता है कि अगर हाँ तिस अनुभव जो लेंदे न या तिस अनुभव ते सीखते न ताई यहाँ अपनी जिंदगी जो अगे बढ़ाई पाते न क्योंकि जिंदगी दा जिहड़ा सफर है ना से बेहतर खास है हर कुसी वास्ते। हर कोई यही चाहता कि अहां अपनी जिंदगी दे सफर जो किस प्रकार खास बनाई सकते। वैसे तो तुहां सारे अपनी जिंदगी दे सफर जो रेडियो गुंजन धर्मशाला अगर तुहां सुना दे उन्हें न कई बार होंदा ना कि हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद होंदी रेडियो सुनना जिहड़ा न कई श्रोता न तिना जो पसंद है से पूरा दिन पर अपना रेडियो सैट जिहड़ा से ऑन करी रखते कने अपना जिहड़ा टाइम है से रेडियो जो भी दिन दे कने अपना जिहड़ा काम है सभी कर दे कोई भी काम है से अगर हाँ समय दे अनुसार कर दे न ताई यहाँ तिस जो पूरा करी पान दे न तो इसी कने तुहां सारे भी समय दे अनुसार इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़िया क्योंकि ये सफर तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक कने समय जिहड़ा है से 2:30 कार्यक्रम च होई न कने अगले जिहड़ा श्रोता न सियां कने जुड़ चुके न कर दिन तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते जी हो ठीक है ना
0: जी? ठीक ठाक है जी। स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
1: धन्यवाद जी। धन्यवाद
0: जी। तुहां कुथों ते बोला दी कने तुहां दा नां की है जी?
1: मेरा नां सरकार है
0: जी।
1: मैं टिल्लू ते बोला दा टिल्लू चकबन
0: जी। टिल्लू ते बोला दी
1: ये टिल्लू पता कता आपने मैं जी
0: जी कुथु दी जी?
1: ये अगंजरमा दे मंदिर है ना
0: जी जी
1: इससे थोड़ा चढ़ाई करी करी उस पर से चकबन
0: जी। अच्छा अच्छा उस साइड है जी ताता पहाड़ा ची है ना तो हाँ
1: हाँ जी जी बड़ी बढ़िया खाड़ी थोड़ी नहीं तो पहाड़ी है ना सुबह रही हवा लगी रंदी बहुत बढ़िया मजा आता है
0: जी। अच्छा हवा जिड़े से तो जो ताजी ताजी मिलती है ना जी?
1: हाँ जी हाँ जी। हाँ तो सामने तो सुबह रहते 7 रुपए दिख रहे कोई मच्छर नहीं कोई मक्खी नहीं
0: जी
1: पंखे की जरूरत नहीं
0: जी। ये तो हाँ बड़ी सही गल बोली कि पंखे की जरूरत नहीं पर मौसम दे हिसाब ने चलिए तो कुथी ना कुथी मौसम जिड़े से यही एहसास करा दे कि गर्मी वाला मौसम है ना जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सवारी आम की जी जी आहां भी सब आई का गर्मी महसूस कर रहे ना
0: जी जी।
1: बच्चे तो लगाए होंगे पंखा अपने ना कमरे
0: जी
1: पर आ मैं नहीं कर रही हूँ
0: जी जी। तो करता है जी तो हाँ इस कार्यक्रम जो रोज ही सुनते
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैं छात्र ने कहना जी मैं थोड़े भी प्रोग्राम बड़ा वधिया सुंदर
0: जी धन्यवाद जी इतना ज़्यादा तो हाँ रेडियो गुंजन धर्मशाला दे जितने भी प्रोग्राम हैं तिना जो प्यार दिन देना जी
1: बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम है थोड़ा बहुत जबरदस्त अच्छी अच्छी गल्ला समझ आंदे लोग पाए वो अच्छे रास्ते पर चलंदे तो हां
0: जी
1: अच्छी अच्छी गलियां गल्ला समझांदे सारा कुछ
0: जी तो करतार जी आज तो हां कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: बोले खानियां बंदिया तो दो ही रोटियां था सुनाई दिया
0: जी अच्छा तो हाँ भी दो ही रोटियां खानी है ना जी जी जी जरूर जी ये फरमाइश तो हाँ तक पहुँचा दें जी
1: जुड़ने वास्ते
0: तो हाँ ना भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी जुड़ने वास्ते
1: धन्यवाद जी धन्यवाद
0: जी ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तशोताओं तो हाँ सारे जो ही लेकर चल देना अगली फरमाइश दी और सुनते नहीं सा प्यारी दिया फरमाइशा जो

तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे कार्यक्रम सुना दी ना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने तुहां सारे ही सुनिया ए प्यारा दिया भजन प्यारी दी फरमाइश फिर तहां वापिस अपनी जिहड़ा गल बात है तिहदे उपर आई हो ना विश्व युवा कौशल दिवस।

सफलता की ओर जरूर जिहड़ा से लेकर जाता है। आर्थिक विकास कौशल कार्य बल जिहड़ा से कौशल कार्य बल के जरिए जिहड़ा से हाँ देश की अर्थव्यवस्था जो जिहड़ा से मजबूत करी सकते कनेसी करने है। अगर हाँ इतिहास की गल करिए या इसकी शुरुआत कालू ते जिहड़ा से हुई थी, शुरुआत जिहड़ा से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 जिहड़ा से ये प्रस्ताव जिहड़ा से पारित किया था। कने पहला आयोजन जिहड़ा से 15 जुलाई 2015 जिहड़ा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिहड़ा बनाना जिहड़ा से शुरू किया था। तो हर साल 15 जुलाई जो ये दिन जिहड़ा से बनाते हैं कने इसका महत्व जिहड़ा से जरूर जितने भी युवा न से समझते होने न कि अहां दी जिहड़ा स्किल है अहां दा जिहड़ा कौशल है से कुथी ना कुथी अहां दे हर हुनर जो सफलता दी ओर लेकर जांदा है। तो इसी सफलता दी ओर तुहां भी अगर अहां कोई भी काम करदे न पहले तो इस कम्मे जो करने दी लगन होना चाहिदी। लगन जिहड़ा है से बड़ी ज़्यादा जरूरी है। अहां हर तरफ कुथी ना कुथी अपना जिहड़ा ध्यान है से केंद्रित करते हैं, चाहे से अगर नशे की गल करिए युवा पीढ़ी जिहड़ा से नशे की ओर ज़्यादा आकर्षण होती है। अगर तो हाँ रिश्तों की गल करिए रिश्तों भी जिहड़ा बच्चे न या युवा है से कुथी ना कुथी ज़्यादा समय जिहड़ा से अपने पेरेंट्स जो नहीं दे पाते हैं। तो इसी करने समय देना अहां दा काम है कि अहां किस प्रकार समय देंदे अपने पेरेंट्स जो या खुद का जिहड़ा समय है से अहां किस प्रकार निकालते हैं से अहां पर निर्भर करता है। तो इसी करने अहां कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते हैं। सुनते हैं इस प्यारे दे भजन जो प्यारी दे फरमाइश जो

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि करने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ करने जुड़ी सकते करने यहाँ करने गल बात जिड़े से जरूर करी सकते। तो श्रोताओं गल बात करने वास्ते जिड़ा हाँ दा नंबर है से जरूर तो हाँ सारे नोट करी ले आना है या नोट नहीं कीते है तो हाँ एक बार फिर तो तुह तक नंबर जिड़े से पहुँचाइंदे न। नंबर है 7018117091। तो इस नंबर पर तो हाँ कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा कने समय जिड़े से थोड़ा दिया ही है तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़िया तो जरूर जल्दी जल्दी तो हाँ जुड़ के ताई तो तुहां अपनी जिड़ा फरमाइशान से सुनी सकते। तो श्रोताओं गलबात जिड़ा हाँ चलाई हुए से जिंदगी दे रिलेटेड हर दिन अहाँ गलबात करते हैं या अजकना जिड़ा दिन है से किस तरीके ने अहाँ खास बना देन। मैं पहले भी तुहां तक के गलबात पहुँचाई थी फिर तो यह गलबात तुहां तक पहुँचाई दी है कि आज अहाँ जिड़ा खास दिन बना देन से बना देन विश्व युवा कौशल दिवस। तो जरूर तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ करने जुड़ी सकते कने अहाँ करने गलबात जिड़े से जरूर करी सकते। इसी गलबात करने अहाँ अपने सफर जो अगे बढ़ाते हैं तो सारे सुनिया ये भजन फरमाइश कि जिड़ा रुत्ता न से बार बार मुड़ी करी आनी पर बंदिया तय जिड़े से मुड़ी करी नहीं आना। तो बिल्कुल सही जिड़ा लाइन न से इस गाने दिया बोलियां न कि सही है कि जिंदगी का जिड़ा सफर है या अहाँ किस प्रकार अपने जिंदगी जिड़ा सफर है तिसजो इंजॉय करा दे न अच्छे विचारा कन्ने करा देन या बुरे विचारा कन्ने करा देन या किस प्रकार अहाँ अपना जेड़ा रहन सहन है से रख्या है क्योंकि समाज है समाज हर चीज़ दिखी करी चलना पौंदी या ये बोलिए कि अपने जेड़ा संस्कार है या अहाँ कितना कि अपने माता पिता का जेड़ा मान सम्मान है से कर देन क्योंकि माता पिता का मान सम्मान करना भी यहाँ वास्ते जरूरी है। अगर अहाँ तिना का मान सम्मान कर देन या तिना दे जेड़ा विचार हैं तिना जो लैन देन तो कुछ ना कुछ अहाँ अपनी जिंदगी च हमेशा सफलता की ओर जाते हैं। शुरुआत अहाँ कुते कर देन शुरुआत अहाँ पहले ये कर देन कि अहाँ का जेड़ा दिन है से अच्छा जा कने अहाँ जेड़ा भी काम सोचे न से भी अच्छे तरीके ने जान तो अच्छे तरीके ने ता ही जानते न जालू अहाँ शुरुआत अच्छे तरीके ने कर देन। तो इसी कन्ने अहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है कने तो हम जो लेकर चलना है अगली फरमाइश की ओर क्योंकि अगली फरमाइश की ओर जाना भी जरूरी है। अहाँ दे जेड़ा श्रोता न से जरूर इंतजार पर बैठे होंगे न कि कलू दिया तिना दिया फरमाइश अहाँ तिना तक पहुँचाते न कने तुहां दा जेड़ा इंतजार है से बिल्कुल ख़त्म कर देन सुनते नहीं सा प्यारी दिया फरमाइशा जो तुहां सारी भी इंजॉय करा।

तुहा सारदप ना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्या तुहा सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर शाह कन्या जुड़ी सकते कन्या कन्या गल बात जिड़े से जरूर करी सकते दशो तो इस कार्यक्रम का जिड़ा सफर है से तुहा तक रहा है 2 से 3 बजे तक कने तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ते न कने गलबात जिड़े से जरूर करते न कने फरमाइश तो सारे ही सुनी ये फरमाइश जिड़े से अहां जो आयु वे कांगड़े ते कने तिना दा ना वे पवना जी तो जरूर अहां पवना जी तक ये गीत पहुँचाया ये फरमाइश पहुँचाई कने तो सारियां भी ये फरमाइश जिड़े से इंजॉय की कने इसी कने तुहां सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जिड़ा सफर है से तुहां तक रहा है 2 से 3 बजे तक 2 से 3 बजे तक ये सफर रहा है कने बड़िया सारिया जिड़ा गल्ला बातें न सभी जरूर तुहां तक पहुँचाते न कने इसी कने गलबात अहां करिए क्योंकि हर दिन अहां वास्ते हर गल जिड़े से जरूरी होंगी हर दिन अहां वास्ते जरूरी होंगे परिवार की अहां गल करिए तो परिवार ही अहां वास्ते सब कुछ है क्योंकि ये जिहड़ा समय है हल अगर अहां इस समय की कदर कर देन समय की भी कदर करनी है कने अपने जिहड़ा माता पिता न भाई बहन या परिवार दे जिहड़ा अपने कोई भी रिश्ते न तिना दा जरूर मान सम्मान करा क्योंकि वक्त जिहड़ा से दोबारा नहीं आता है सिर्फ जिहड़ा यादा न सही अहां जो तिना ही यादा जो अहां जरूर याद करी सकते समय जिहड़ा से अपनी रफ्तार कन्ने चलदा जांदा है कन्ने अगर अहां इस समय जो खोइंदे न या अपने काम च बिजी रहिंदे न अजकने दौर दी अहां गल करिए तां कुत्थी ना कुत्थी अहां अपना जिहड़ा समय है ना से अपने जो नहीं दे पा दे या अपनापन बिल्कुल ख़त्म है सही कि यहाँ सबर करना नहीं सिखा दे अगर चाहे से अहां दे भाई बहन बड़े न या छोटे न अहां जो सारे दी सुनना चाहिए क्योंकि सुनते न ताई अहां अपनी जिंदगी चाहे बढ़ते न कने अहां दे माता पिता न सभी अहां वास्ते अच्छा सोचते न अच्छा सोची करी से अच्छे विचार अहां तक पहुँचाते न ताई अहां अपनी जिंदगी दे सफर जो अगे बढ़ाते न तिना दा आशीर्वाद अहां जो मिली आंदा है तो कुथी ना कुथी अहां अपनी जिंदगी दे सफर जो और भी बेहतर जिहड़े से बनाई लैंदे न तो बड़े अच्छे विचार हैं या बड़ी अच्छिया जिहड़ा लाइना न से जरूर अहां तुहां तक पहुँचाइया न कने तुहां जरूर ये लाइन जिहड़ा न ध्यान ने सुनिया होनिया ते इसी कने तुहां सारे ही अपनी रेडियो दो शशि जो अनुमति भी देनी है कने जिहड़ा फेसबुक लाइव दिखा देन तिना जो भी यही बोलना चाहती कि इस कार्यक्रम का जिहड़ा सफर है से तुहां तक रहा है 2 से 3 बजे तक तो तुहां सारे ही अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपनेपन दी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मुझे पढ़ना है, मुझे उड़ना है।

सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना।

0: लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आग तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, फिर
1: ओ यस यस, हां सर,
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, अगर जान गए जवाब।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: ऐसा जहर आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है आखिर इस शहर को हुआ क्या मना ही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है क्यों कोई कुछ नहीं बोलता चुपचाप धुएं को क्यों छेलता हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा मुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना धूम्रपान न करें न करने दें
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो उनकी हेल्प ले लो
2: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात हेलो नमस्ते पापा जी हाँ जी सब बढ़िया पापा जी एक हेल्प चाहिए थी वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना तो एक एसी लगवाना था हाँ हाँ ठीक है पापा जी थैंक यू सो मच ओके
1: क्या वो पापा जी मान गए
2: अरे मानेंगे कैसे ना एक ही तो दामाद है उनका अब तो खुश हो ना

का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

0: कल कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चले।
2: थोड़ी देर हो गई। मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूँगा तो कब करूँगा?
3: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
4: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: पटेल, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई, अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना,
5: हाँ?
4: मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई,
5: हाँ?
4: वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ, हैं? वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है?

0: और उपन्यास भी लिखते हैं। विवेक रंजन जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी, विविध भारती के माध्यम से आपको, विविध भारती परिवार को और
2: FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच तुंदा सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कैसे तो सब, उम्मीद करनो तो सब खरे भुने, खुश भुने और अपने घरे मस्त भुने, तंदुरुस्त भुने हिन। श्रोताओं तो सब श्रोता हसू के जुड़ सकदन, बने सकदन, अपना पसंदीदा गीत हुने सकदन, अपने क्षेत्र की जानकारी वो गीत साझा कर सकते हैं। इति वास्ते तुस वो बिल्कुल नंबर जो है दिन दिन 10 नंबर मंच कॉल करने हैं 7081 8 8 7 0 9 8 पर नंबर अग मुके फिर आओ तू वो गीत शेयर करनो हाँ 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं। श्रोतों अपने क्षेत्र जानकारी किया सुसांझा कर सकते हैं। बल्दा इंसान के ना सो टुटंदा जरूर हा, बसदा जरूर हा, फिजिकली ना कदी कदी दिला थों भी है ना, टुटंदा जरूर है, बसदा जरूर है, लेकिन तथों बाद इंसान के शोतों सो मजबूत बुचगंदा हा, पक्का बुचगंदा हा, और बहुत सारी चीज़ मंज समझदार भी किया सो बुचगंदा हा। जिंदगी बल्द ना जीना आसान है, बड़े आसान और बड़ा मजेंदा जिंदगी जीने वा, सो मज़ा और सो आसान गिरी ताई बुझ सकती है जिंदगी मंज जहने किया है तह जिंदगी जो किया सो खूबसूरत तरीके होगी जिले, अपनी जिंदगी जो किया सो है बगैर टेंशन है, बगैर स्ट्रेस, बैग आउट करे मॉर्निंग वॉक, बैग आउट करे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीज़ अगर है कर लेता जिंदगी भी शुरुआत हर दिन रे शुरुआत किया सो बेहतरीन करने की कोशिश कर ले, पूजा पाठ करी करी हर एक चीज़ करी करी ता जिंदगी किया सो अच्छी लगती और खूबसूरत लगते है। अगर बैग आउट करी घर अंदर काला कलेश आ, बैग आउट करी घर अंदर डंड कला, बैग आउट करी किया सो तो है बच्चे जो जोर जोर बल्लू करते हैं तो है हर जगह किया सो जोर जोर बल्लू करते हैं, बरकता नहीं घर अंदर तो फिर सो जिंदगी कलेश ही लगते, जिंदगी जीने में तो ती मज़ा नहीं आता। बहरहाल तक कॉल कर सकते हैं 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर। तो चलिए जी, बहुत सारे गीत के न सो असु तुस होगे साझा करने हैं और साझा करी करी शोधों बिल्कुल तो है कॉल कर सकते हैं जी और अपना पसंदीदा गीत किया सो भी हो सकते हैं। तो आइए जनाब आगाज कर लेंदेन है सब भी कार्यक्रम रहा इस प्यारे दे गीत हो गए है ना। आगाज तो बाद शोधों फिर अन्य जानकारी जो असू तक पूछ दिन सो जानकारी तो सुधक है जरूर पहुँच ल बने रहा जुड़े रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगी और आरजे सचिन कपूर सोगी मुलदेन छोतों इस गीता तो बाद ला जरा तो है भी थोड़ी थोड़ी फराटी और गीत ही तो जिंदगी रासली मजा आशो तो है ना, ये तो इंदे सुखा मंज भी कामिंदा और दुखा मंज भी कामिंदा है। आइए इंजॉय कर देने इस गीता जो

0: अशो तो बहुत प्यारे दे गीत हो सभी के, सो हूँ गिरी फिरी नच्चा ओकोरियो भरमोरियो, है ना। तो चलिए जी, कार्यक्रम मंच अब है इंदे श्रोतागण भी सूख के सो कनेक्ट लगे भूने, तो सब हूँ कर देना अपना गादा कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी हुने वाले रहा, सभी श्रोतागण रहा। तो क्या हाल चाल ने श्रोतो तुंदे, उम्मीद कर नो हाल चाल खरे भूने ने, फिट एंड फाइन भूने ने, और अपने घर है खुश भूने हिन, जो कि बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब खुश रहना। अक्सर बल देन, बार बार बल देन, हर रोज बल दे हिन शुदों। ता चलिए जी, कार्यक्रम है अबे लाइव रे जरिए के सो भी चलिन देन, लाइव रे जरिए की सो भी तैयार पैना अंश तो फेसबुक लाइव रे जरिए, है ना जी। ता आइया फेसबुक लाइव रे जरिए के ना सो चल देना है, और तो सब बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सो गए, कुछ एक जानकारी के अंश तो सो तो सो गया सो शेयर करनी ही ना, साझा करनी ही ना। और साझा करनी हिन और श्रोता हूँ, लेकिन चल दे तू सब भी जो है फेसबुक रे माध्यम तो बिल्कुल लाइव किया सो चले आए हिन, है ना। ताइया इंदे श्रोतागण के अंसो भी असोगी बिल्कुल जुड़ी कुछ छू रहे हिन, तो बहुत बहुत स्वागत है सभी हुनने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। भैया लेकर ये चल दे श्रोतों तू सभी जो चलिए जी, FM बैंड 91.2 MHz पर है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और आऊँ सचिन कपूर हा इन द्रोता सूगी बिल्कुल केन सो जुड़ी चुक रहे हैं अकमो के फिर तुंदा सभी रखिया सो बड़ा बड़ा स्वागत है, मोटा मोटा स्वागत हा कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा मंच। कुछ एक खास जानकारी भी असु तुस होगी शेयर करनी साझा करनी हिन, आइए लेकर चलते तू सभी श्रोता जो श्रोतों इन पहले श्रोता होगी कि सो तुस रूबरू कर बंदे। नमस्ते जी,
1: नमस्ते भाजी, सचिन भाई नमस्ते भाजी,
0: नमस्ते जी, नमस्ते
1: बढ़िया ना
0: बहुत बढ़िया जी, तो है भला तो है ठीक ठाक राजी बाजी।
1: जी, बढ़िया भाजी, बढ़िया।
0: अच्छा जी, कौन बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू कर देन।
1: हाँ, उसे तो बड़ी तो बल्लू कर ला अशोक कुमार,
0: अच्छा सिद्ध बाड़ी थो, क्या नाम दसो तो है अपना।
1: अशोक कुमार
0: अशोक कुमार जी, अशोक कुमार
1: जी,
0: जी कदे गो आज कना दिन तुंदा।
1: बस बढ़िया जी, जो निकल गया जो अपना ही जी, बढ़िया जी। कहे
0: हाँ बिल्कुल, जो दिन निकलेगा सो अपना, है ना।
1: कि हर दिन हर नई जिंदगी मिल गई है।
0: हाँ जी, हाँ जी, चलिए
1: सचिन
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: भाई
0: अतः अशोक जी क्या है फरमाइश है तुंदे, क्या है फरमाइश रहने वाले कुन दिन गीत
1: की
0: होना चाहते।
1: मेरी फरमाइश है कि राम का बुलावा आया कि बुढ़िया बने चाहिए,
0: अच्छा राम राम दा बुलावा आया
1: बुढ़िया ये बन गठड़ी।
0: बुढ़िया बन गठड़ी, ठीक है जी, हाँ जरूर तुसु एक गीत होना लह है। धन्यवाद जी। श्रोता FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला, तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के सो बिल्कुल लाइव हूँ कर देने अपने अपने वेडियो सेट में। आइए जी कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हैं श्रोतों, और लेके चल रहे तू सभी जो बिल्कुल ऐसा जानकारी रही, और हिमाचल प्रदेश में के ऐसो धीमा पेगो अवे मानसून श्रोतों। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिन आता कि ऐसो लगातार जारी बरखा रे बीच अब मानसून री रफ्तार की ऐसो धीमी पैगी है श्रोतों, और राजधानी शिमला में तेज धूप की ऐसो खिल रहे थे, हिमाचल रहने स्थाना मंच भी की ऐसो तेज धूप खिल रही थी श्रोताओं, और ऐसी सोगी सोगी मैदानी इलाके में भी किया सो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप थी श्रोताओं, और मौसम साफ किया सो रेव करता है अब उमस किया श्रोताओं, उमस किया सो बढ़ी गई है, मौसम साफ साफ भुने थों किया श्रोताओं, सो प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किया सो बढ़ोतरी दर्ज भोई है श्रोताओं। 18 जुलाई थों लेकर अकमुक 18 जुलाई थों के सो अकमुक के अखबार फिरे किए सो मानसून रे सक्रिय होने री और कई स्थान पर भारी बरखा बुने भी चेतावनी किए सो जारी है। सो तो बीते 24 घंटे री अगर हम गल करूँ तो 24 घंटे वे दौरान प्रदेश में वर्षा री गतिविधि में साफ कमी किए सो दर्ज भोए हा सो तो और नज़र आए हा। केवल कुछ स्थान पर ही हल्के बरखा किए सो तो सो भोए हा और सब तो अधिक 17.4 mm मंडी ज़िला में किया सो भोई है। सो तो जोगिंदर नगर में भी 3.0, कसौली में भी 3.0, हमीरपुर में भी किया सो 0.5 और बिलासपुर में भी 0.4 mm बरखा भोई है। सो तो मौसम विभाग के अनुसार अगर हम गल करूँ सो तो 16 जुलाई जो यानी कि दुत्ते की सो प्रदेश में अलग अलग स्थान पर हल्की बरखा भूने री संभावना है। 17 जुलाई जो बरखा री गतिविधि में कुछ बढ़ोतरी किया सो बुझी सकती है। इतों बाद 18, 19, और 20 जुलाई जो कि है सो कई स्थान पर बरखा भूने री तथा कुछ स्थान पर भारी बरखा भूने री किया सो संभावना है। सो तो ये मौसम री जानकारी किया सो ऐसे तुसु तक पहुंचाई देते हैं। तो सब बन रहे ने समय आरजे सचिन कपूर सोगे कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा हुनु करते हैं। आइए श्रोता हूँ लेके चल रहे तू सभी जो इस प्यारे दे गीता री किनारी गीत संगीत रा दौर के श्रोता हूँ सोता चलता ही रहना। एक कुछ एक जानकारी थी मौसम थो रिलेटेड सो है तुसु तक साझा करे या और आइया राम दा बुलावा आया है ना जी इन गीत किया सो उन्ना हा ता जरूर हुण ले जी तो सब बन रहे इस समय आर जे सचिन कपूर सो की लेके चलते तू सभी जो श्रोतो इस गीत तारी किनारे बने रहे जुड़े रहे आसू सो गे और राम रनाथ हमेशा लेना चाहता श्रोतो भगवान रनाथ हमेशा लेना चाहता।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी है ट्यून कर रो और हाँ सचिन कपूर है श्रोतों तुम अपना आर जे वेड़ी जो कि चलिए कार्यक्रम जो होगा बढ़ते हैं श्रोतों और लेकर चलते हैं तू सभी श्रोता जो तो सब श्रोता सोगे कनेक्ट हो सकते तो सब श्रोता सोगे किया सो हाँ जरूर अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं ना 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर श्रोतों तो यह है मानसून रे की ऐसा जानकारी तुसु तक पहुँचाए है श्रोतों की हिमाचल प्रदेश में कि ऐसा धीमा पै गया हुआ मानसून इसो की श्रोतों प्रदेश में तुसु उदा सुनना चाहता कि हिमाचल प्रदेश में बारिश तो बंद किया सो 144 सड़क हैं 144 सड़क पर किया सो पीडब्ल्यूडी ये किया सो दौड़ाए ट्रैफिक जी बिल्कुल प्रदेश में बरखा के कारण श्रोतों बंद प्यूरी ग्रामीण सड़क जो सड़क यातायात आके सो बहाल करने व कम युद्ध स्तर पर किया सो चालू करता है और विभाग किया सो यानी कि डिपार्टमेंट है किया सो वह जे वे अलग अलग हिस्से में बंद प्यूरी हिन सड़क 144 सड़क किया सो बंद थी लेकिन अब डिपार्टमेंट है किया सो खोली देती हिन श्रोतों है ना और कार्यक्रम हिंदी अपनी गपन सो इस वेल चल रहा है श्रोतों और आइया लेकर चलता है तू सभी श्रोता जो इस प्यारे दे गीत तारी किनारी तो सभी यहीं बनी रहा और हूँ रहा हिंदी अपनी गप्पा कार्यक्रम ना हिंदी अपनी गप्पा और हूँ रहा अस सोगी वीडियो गुंजन भी गूंज सोगी चलिए हूँ दिन श्रोतों तू सभी जो हे प्यारे दे गीत ना रोल माए मैं रोल गई हाँ तेरा दरबार भुल गई हाँ

0: श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 MHz पर है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आमदन अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर है। चलिए कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हैं श्रोतों, तो सब बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सो के और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गेंद सो बिल्कुल वेडियो मंच लाइव चल रही है और फेसबुक रे माध्यम थो भी किया सो है तो सो की बिल्कुल लाइव जुड़ते भी और जुड़े भी चल रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है जनाब, हार्दिक अभिनंदन है अकमो के फिर सभी होने वाले रहे सभी श्रोतागण रहा कुछ एक खास जानकारी के न सो है तो सो तक पहुँचन दे हैं श्रोताओं और इन्हें खास जानकारी जो के सो तू हो गया है शेयर कर दे साझा कर दे हैं। तो तू सब ये दर्शना चाहता है इन श्रोताओं की आदत किया सो लाइट कड़ी कड़ी न भुने सो तू सो गया है ज़रूर शेयर कर दें तू सो दस दिन जनाब की दुतकने दत्ते की सो लाइट कड़ी कड़ी ने बुने है ना। तो लाइट आए काम के सो बेगी करी लेना ए जी दत्ते ना माफ़ करा 17 जुलाई जो 17 जुलाई जो कि है श्रोता हूँ सो दाढ़ी में बिजली बंद रहने हाँ जितने भी इंदे दाढ़ी रे श्रोतागण कुछ एक सो कि जुड़े भी होंगे है ना लाइव कार्यक्रम में इंदे बिन इंदे श्रोता सो कि बिल्कुल कॉल करो कर दें जी जनाब मेरी रिली तुंदी मिस कॉल तू वो कनेक्ट कर दें 708-8-7-0-9 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो बिल्कुल लव हो गए शेयर कर सकते हैं साझा कर सकते हैं। बहरहाल लेकर चलते तो सभी जो आज कने जो दाढ़ी कड़ी कड़ी की है सो बिजली ना रहने तह जानकारी रही और शो तो जानकारी जी कि तो है सब जानते हैं कि विद्युत उपमंडल 2 वैसाहिक अभियंता रमन भरमोरी है ये जानकारी की है सो असू तक पहुँचाई हाँ श्रोताओं और तिन्हें दसो कि लाइना वे सामान्य रख रखाव वास्ते किया सो 17 जुलाई जो बेगा 9 बजे लेकर संध्या 5 बजे तक किया सो बिजली बंद रहने हाँ श्रोताओं कड़ी कड़ी शीला चौंक अचीवर हब दाढ़ी बाजार पासू भटेड़ और अन्य सोगी लगते जितने भी इलाके हैं जितने भी क्षेत्र है इड़ी किया सो बिजली बंद रहने हैं। अगर मौसम 17 जुलाई जो खराब हुंदा तो कार्यक्रम किया सो अगले दिन बुना ला यानी कि ये जो इंडिया कार्यक्रम प्लान करो 17 जुलाई जो 9 से 5 बिजली बंद करने रहा लाइन रहे रख रखाव रहा ये फिर अगले दिन किया सो पोस्टपोन बुझेगाना हाशो तो है ना और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रहे सभी ये किया सो आम पब्लिक थों किया सो सहयोग री अपील करे हाशतों की तो है 17 जुलाई जो किया सो सहयोग ज़रूर करना। चलिए जी राम राम सचिन जी राम राम अश्विनी सुकेतिया साहब राम राम जय श्री राम। बहरहाल लेके चलते तू सभी जो श्रोतों इन द श्रोता सो के कनेक्ट कर दें। नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार।
1: नमस्ते
0: सचिन जी कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन
1: ना शाने
0: ना जी तुम दी आवाज
1: हेलो बदनी माँ सच माँ
0: हाँ जी तुम दी आवाज नहीं चुन दी जी क्लियर है सुधर ना
1: चलो ना आये क्या आवाज
0: क्या पता कुछ फोन ना खराब भी लोगों कर दा सूजी कि तुम दे फोन ना शायद खराब भी है
1: बदनी माँ का अम्मा
0: अच्छी आवाज ना असु तक पुज्जु कर दे आज पता ना क्या गल है।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: बन्नी माता
0: अच्छा मुझे मैं बन्नी माता होने हो आगो हम समझ गो कि कौन आवाज ना जाने तो उनका फोन खराब आ कि सिग्नल ने आवाज मुझे तक बिल्कुल क्लियर जी पूछ देते ना पूछो कर दे जनाब अम्मा कुछ ना कुछ दिक्कत था आवाज कुछ यहाँ टूटे टूटे छु कर दिया अच्छा अच्छा जी कौन दिन गीत होना जी हाँ जी
1: गीत हो ना राम बढ़िया चल गया राम राम दबदबा दो भाई राम राम दबदबा
0: माफ करा हम्म जी हाँ बड़ा खुश रहिंदा अपने सियाने री सभी भी सेवा करने वास्ते और सभी री फरमाइश पूरी करने वास्ते। लेकिन मुझे तुम्हें जरा भी आवाज की सुना इच्छु कर दे ना गीता पल्ला पे करता कि गीत कौन देना होना तुसु तब हो सकता था तो है मैसेज असू कर दिया कसकी बल्ले करे है ना परिवार मंज तो है जरूर तुम्हारी फरमाइश की सो पूरी कर ले मजे। धन्यवाद जी, माफ़ करो जी आवाज़ की है सो पता नहीं कौन क्लियर इच्छू कर दिया। बहरहाल इन अगले श्रोता असू की कनेक्टेड थी है लेकिन डिसकनेक्ट पूछ गए इतों बहुत सारे श्रोता गए सो कॉल करूँ कर दिन त्राई सौ नंबर लास्ट अंदर लेकिन फिलहाल डिसकनेक्ट पूछ गो हा तथों और अगले श्रोता असू अगे कनेक्टेड हिन। नमस्ते जी।
2: नमस्कार सचिन जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार
2: जी, हो ठीक ठाक है ना?
0: बहुत बढ़िया जी, आशीर्वाद है तुंदा सभी रा हाथ जोड़ करे। नमस्ते दोस्तों, कौन बोलन देन और कड़ी थों बोलन देन?
2: सारा टिल्लू बोलन दे करतार जी।
0: टिल्लू थों करतार जी, अच्छा और करतार जी ठीक ठाक ने सब? टिल्लू वाले सब ठीक ठाक ने राजीव बाजी?
2: बढ़िया जी बढ़िया, नाग छतरी मेहरबानी है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इंद्रनाग महाराज जी री मेहरबानी किया सो सदैव बने रहे, त्यार आशीर्वाद किए सो सदैव बन रहे, बस यही कामना कर दें जी है।
2: जी जी जी, और सर
0: बढ़िया जी। अता जी
2: बरसाला के ना होंगे?
0: बरसाला फिलहाल तो मानसून की सो धीमा पेगो जी, पर बुझ सकता 17-18 जुलाई थो दसो कर दिन के फिर आके असो बुझ सकते कि बरखा शुरू होन है ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गर्मी बड़ी भारी बिच बन दिया ना?
0: गर्मी तो बच्चू कर दी, ये तो है पता ना कार्यक्रम होनो कि ना होनो अपना गादा कार्यक्रम ही मैं जानकारी आके थे सो पंचायत है कि 2050 तक किया सो हिमालयन भी किया सो पिघले गाना इंदा
2: बर्फ
0: जड़ी है ना ये पिघलना लगे प्योरे और ना बनो कर दे और फिर इंदे भरमौरा था अक्षोता के सो असो की लाइव जुड़े थी और तीनिया दसो थो कि हाँ वाकई में मतलब जो त्यारे घर सामने उनके बुना ना कुछ ये दसो तो तीन है ये तो चेतन रे मंजू भी आवे है तो सो दस सुंदर है तड़ी भी बर्फ की सो ना जम्मू कर दी लौड़ा जो टपन दे तीन में ते शायद भरमौर आखरी बुना ना कोई पहाड़ तीन में ते।
2: हां जी हां जी
0: हां जी,
2: तो ये आज तो ना गर्मी का काल ने ट्रैफिक कितने बढ़ गए हर घर में जाते कोई गड्डी ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: काउ करदा सो भी खत्म करू करदा इंदी पुरानी चीजों भी जा मुकाउ करदा ना
1: बहुत ज्यादा मकाई बहुत ज्यादा मकाई थी
0: बहुत ज्यादा मकाऊं दे और तीन चीजें अंदर ही था सुकून थू तीन चीजें अंदर ही था भले ही पैसा घट बोला भले ही शोफ घट बोला लेकिन असली जिंदगी की असो सोई जीव कर दे तीन दे सियाने
1: बिल्कुल बिल्कुल सोई थी जी हम जाते हैं आड़ू लगता है ना जी सर आड़ू लगता है ना आड़ू कीड़े पे के छुंदे
0: पे के छु कर दे
1: नाशपाती खांदे आड़ू खांदे या बच्चे आते खाऊंगे इनका अरे तो कीड़े पे के छुंदे
0: एरा ना मंदन क्या है थोड़ा डेवलपमेंट करू कर दिन जमाने रे हिसाब तो असू बदली ना भी पैना लेकिन ऐ सुखी सुखी तीन भी बदलियो कर दे और सुखी सुखी बीमारी जो भी था है आमंत्रित करू कर दिन कितनी बीमारी असू लगू कर दिन सोचा ला तो है
1: बहुत ज्यादा
0: है ना पहले हेरा कि बड़ा कखा की जिगर या सोई हाँ टीवी होने जो मिलता तो कि फलाने वो टीवी है जी है ना बड़े उतियो बाद मतलब कोई बीमारी होने जो मिलती थी लेकिन अचकनी दो अचकने दे अचकनी अचकने इस दौर में किया सो हर दुए घर है डायबिटीज पेशेंट आ हर दुए घर है बीपी वे पेशेंट आ जवान जवान जो कि है सो हार्ट अटैक पे के छू कर देना न सब लोग वो जिगे छू कर दी है ना हॉस्पिटल रह चक्कर है सो लाने पे कर देन था ये सब कर कर कर खा इन शरीर की है मानव शरीर की है सो बिल्कुल नष्ट हो चू रहे है इस बदलाव के कारण
1: सही गल है जी बिल्कुल बिल्कुल खराब जगह शरीर खराब जगह हर घर में कोई बीपी आए कच्ची रहा के शुगर आ ये शुगर है हो गया ना कभी शुगर बंद है क्या चीज है
0: जी
1: ये पता ना होगा शुगर क्या चीज है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी सर नाग क्षत्रिय खाना आई आप बता देना जे
0: चलिए ठीक है जनाब जरूर होना ले तुसो नाग क्षत्रिय रे भजन
1: ठीक है सर धन्यवाद बहुत
0: धन्यवाद
1: बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद जी धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: शोधो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रो और कार्यक्रम में इंदी अपनी गप्पा के सो बिल्कुल लाइव चल रही इंदुन दे वेडियो उस सेट में बहरहाल कार्यक्रम मंच थोड़ा करे आगो बढ़ देना है फेसबुक रे जरिए भी गया सो फरमाइशा इच्छुक कर दिन कमल नहरियारा छोरिए गाना हुनाए दिया सुनील कुमार जी बल्लू करते हैं बर्फू राम भारद्वाज आई थिंक हाँ बर्फू राम भारद्वाज जी बल्लू कर देन भाई जी संदीप कपूर रा गाना हुनाए दिया मन दिया लगिया गया जो कुण मन दिए लगिया जो कुण जानदा थोड़ा गिर तो है हिंदी या लिखू रहा शायद तो चलिए जी फरमाइश रहा दौर भी है जरूर शुरू कर दे हिन बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो के गूंज अपने बन रहे और गूंज रेडियो गुंजन धर्मशाला रे और फिलहाल इन अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हिन पुछ दिन कुन बलुंदन नमस्ते जी
2: हेलो नमस्ते भाई जी
0: नमस्ते जी नमस्ते
2: साक्षी बोल रही कहीं आ रहे कटोरी से
0: हाँ जी साक्षी
2: बरमाणी माता का इतनी राणा के आवाज में
0: ठीक है साक्षी जी धन्यवाद
2: धन्यवाद
0: चलिए श्रोतों कार्यक्रम जो होगा बढ़ंदे हिन और फिलहाल इंदुराग महाराज जी रा गीत के सो हुनंदे न अपने श्रोता जो और तत्थों बाद फिर फेसबुक रे जरिए जो फरमाइश है इच्छु कर दी या सुधगर सो तुसु तगर है जरूर पहुँचन दे हिन शोतों मैं तुसु बल्लो तो ना कि चूर हकरी करना पेंदी ना सु चूर हकरी करना पेंदी और थोड़ा दिमाग भी लाना पेंदा ताई चीज अगेन सो पैरलली चल दी हिन नेता गड़बड़ पुछगन दे जनाब चलिए ये आड़ी गड़बड़ की ऐसा होता है ये तो इनके हथ है दिमाग के है ना ये तो है कंट्रोल भी कर ही लेंदे और अपने तरीकों के चलाए भी लेंदे ने लेकिन जो जिंदगी की समस्याएं बंदी ना जो अपने आप चली गए चली इंदी ने सो समस्या कंट्रोल करना के ना सो मुश्किल बची गंदी हिन फिलहाल इंजॉय कर देन मारा अच्छी रहे गीत

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हवेली गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी एटी उनको रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मौके फिर सभी होने वाले रहा हार्दिक अभिनंदन। हाँ 7088 8 8 7 0 9 8 पर तो है कॉल कर सकते नंबर आख मौके फिर हम रिपीट करनो हाँ दोहरनो हाँ 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के श्रोताओं से हो नहीं सकते अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो होगी साझा कर सकते हैं। यह गलारा खास ख्याल रहे श्रोताओं की जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर हुआ जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक किया सो जरूर हुआ। कुछ एक बहुत सारे कॉल्स के अनुसोच्छु कर दें श्रोतों ज़रूर कोशिश कर दें कि सभी जो है कनेक्ट कर दें हिंदी हमेशा तो कोशिश रहन दिया और कोशिश किया श्रोतों सो रहना भी चाहिए दिया है ना। बहरहाल कार्यक्रम मंच इंदे श्रोतागण असोगे कनेक्टेड हिन पूछ दिन कौन बोलूं दिन और कड़ी थों बोलूं कर दिन। नमस्ते जी हेलो माफ कर रहे शो तो डिस्कनेक्ट हो गए तो चलिए तो सब इंडिया को शो तो कनेक्ट हो चुके करते थे जो भी शो तो बोले सो लास्ट ही बुने का जो कि समय बची गो हाँ फिलहाल था इंडिया अगले शो तो ओहो मनुओ बुआ क्या है फिलहाल चल दें और कार्यक्रम मंच श्रोता हूँ लेके चल दे तू सब भी जो आगो थोड़ा करे और आगो लेके चल दे हिन तो सब बन रहे हिंदी अपनी गप्पा होगी कार्यक्रम सोगी आइए श्रोता हूँ इंदे अगले श्रोता फिर ही कॉल करो करते हैं कोशिश कर देना है कि इन जो है कनेक्ट करी ली 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है कॉल कर सकते हैं नंबर रख मुके फिर आऊँ तू वो गे साझा करनू हाँ शेयर करनू हाँ 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने भी सकते हैं और होनाए भी सकते हैं लेकिन यह गल खास ख्याल रहे कि जानकारी की ऐसा साझा करने लायक जरूर हुआ बहरहाल यह कर दिन शोतो फरमाइशा पूरी है ना संदीप कपूर रहे गीत हूँ दिन तू सब भी जो शोतो

चौदह फिलहाल आऊँ सचिन कपूर ले लेने तो सुथों इजाजत और कुछ एक खास समाचार अब तो सुपांच तो पाँच दस के सो जरूर होने इन आऊँ सचिन कपूर ले लेने इजाजत हंस दे रहे मुस्कुरा दे रहा नमस्ते धर्मशाला बुजुर्ग सेवा कर दे रहा।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मुझे पढ़ना है, मुझे उड़ना है।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय

0: से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए। तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल, भैया अगर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर। एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मनाही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
1: क्या वो पापा जी मान गए?
2: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने, और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। गीत सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नई पुरानी 91.2 MHz पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं श्रोताओं कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अक्सर कहता हूँ ना श्रोताओं कि खुश रहना और तंदुरुस्त रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में श्रोताओं, तभी तो ज़िंदगी जो है वो बढ़िया चलती है श्रोताओं। और अगर आप खुश नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो फिर प्रोग्राम कैसे सुनेंगे आप सभी? गुड इवनिंग धर्मशाला। तो चलिए, फ़िलहाल मैं सचिन कपूर हूँ आपके साथ और 8 बजे तक बिल्कुल रहूँगा आपके साथ श्रोताओं। इस कार्यक्रम में अनेकों जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाएँगे, साथ ही साथ गीत संगीत के माध्यम से आपका दिल छू लेने की कोशिश जो है वो भी हम अक्सर करते भी हैं और करेंगे भी श्रोताओं, है ना। तो इस समय अगर मैं सबसे पहले, आप सभी बाखूबी जानते हैं कि हम धर्मशाला में रहते हैं, तो सबसे पहले हम धर्मशाला का मौसम जानने की जो एक वो शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, एक बड़ा प्यारा सा शब्द मेरे पास आया था लेकिन चला गया, ऊपर से ही चला गया। हाँ, एक इच्छा होती है हमारी ना कि धर्मशाला का मौसम कैसा होगा, और ख़ासकर उन लोगों की ज़्यादा इच्छा होती है जो अपनी इस देवभूमि के साथ जुड़े हुए हैं, धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़े हुए हैं श्रोताओं। जो बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं उनकी ज़्यादा उन्हें ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो है वो रहती है। तो इस समय 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान है धर्मशाला का। नमी की भी बात की जाए श्रोताओं, तो 70% के आसपास जो है वो नमी है। तो ये है धर्मशाला का इस वक्त का मौसम श्रोताओं। आइए जी, तो आगाज़ करते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से गीत हमारे पास हैं श्रोताओं, इन गीतों के साथ कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। बने रहेगा, जुड़े रहेगा आरजे सचिन कपूर के साथ गूंज।

चलिए जी श्रोतम, बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना। आवाज़ तो हमको, हम बताइए ना, आप सभी ये गीत सुन रहे थे। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना, आवाज़ तो हमको, और ये गीत दुश्मन मूवी से लिया गया था श्रोताओं। लता जी और उदित नारायण की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सभी के वेडियो सेट पर ब्रॉडकास्ट हुआ। चलिए तो कुछ एक जानकारियों के साथ जो है वो भी आपको रूबरू करवाते हैं अपने फेसबुक के माध्यम से भी, और साथ ही साथ जितने भी हज़ारों लाखों श्रोता हमें रेडियो पर सुनते हैं उन तक भी ये जानकारी जो है वो पहुँचाते हैं श्रोताओं। प्रदेश में कचरा प्रबंधन की लापरवाही पर अब सीधे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार के 6 वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को मिलकर एक उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है श्रोताओं। जी बिल्कुल, इनको मिलकर जो है वो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शामिल हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि पुराने कचरे को वैज्ञानिक तकनीकों से हटाने की तय सीमा का किसी भी स्थिति में जो है वो उल्लंघन ना हो। जी बिल्कुल श्रोताओं, तो ये कोर्ट के आदेश हैं और ये जानकारी आपने वेडी गुंजन के माध्यम से सुनी और बिल्कुल फेसबुक के माध्यम से आप तक ये जानकारी जो है वो पहुंच रही है। आप सभी सुन रहे हैं इस समय रेडियो गुंजन को, मैं नाचीज़ सचिन कपूर आपके साथ हूँ। इसी के साथ अगली जानकारी शेयर करते हैं, साझा करते हैं श्रोताओं। टोल वसूली पर सरकार का बड़ा एक्शन है, हटाए जाएंगे नियमों के तहत 2 टोल प्लाजा के बीच जो है वो न्यूनतम जो डिस्टेंस है श्रोताओं वो 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, है ना। लेकिन जांच में कई जगह ये दूरी मात्र 45 से 50 किलोमीटर जो है वो पाई गई है। कई परियोजनाओं की निर्माण लागत सालों पहले जो है वो पूरी होने के बावजूद भी वाहन चालकों से जो है वो लगातार पूरा 100% टोल जो है वो लिया जा रहा है, वसूला जा रहा है श्रोतों। मंत्रालय की अतिरिक्त ऑडिट रिपोर्ट में दिल्ली हरियाणा कॉरिडोर पटना क्षेत्र मुशर्रफाबाद इन मार्गों पर कानपुर फतेहपुर इलाहाबाद कॉरिडोर जैसे प्रमुख मार्गों पर जो है वो ये जो टोल है वो वसूला जा रहा है और इन टोलों पे ये देखा भी गया है कि मात्र जो दूरी है वो 45 से 50 किलोमीटर की है और एज फॉर रूल जो है वो कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी जो है वो होनी चाहिए श्रोताओं। तो इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलेगा। आप सभी बने हुए हैं इस समय सचिन कपूर के साथ। प्रोग्राम का नाम है, कार्यक्रम का नाम है गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए तो श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा आप सभी के रेडियो सेट पर। जी बिल्कुल, फिलहाल लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को थोड़ा सा और आगे, और अन्य जानकारियां हैं श्रोताओं जो हम आप तक पहुंचाएंगे और पहुंचाने की जो है वो कोशिश ज़रूर करेंगे। बहरहाल लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

बिल्कुल अजनबी मुझको बताना। बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना श्रोतों, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और प्यारा सा ये गीत था श्रोतों, जो कि प्यार तो होना ही था मूवी से लिया गया था श्रोतों, और आशा भोसले जी और उदित नारायण की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत हम सभी ने सुना आप सभी के वीडियो सेट पर। बहरहाल कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो हम आप तक पहुँचाएँगे श्रोतों, लेकिन इस समय जो अभी जरूरी जानकारी है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में धीमा पड़ा है मॉनसून, जिसकी वजह से थोड़ी सी चिंता जो है वो किसानों को हो रही है। बारिश ना होने से किसान चिंतित जरूर है श्रोतों। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में लगातार जारी बारिश के बीच अब मॉनसून की रफ्तार अभी धीमी पड़ गई है श्रोतों। जी बिल्कुल, और बताना चाहते हैं आप सभी को कि मौसम साफ होने के साथ प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 18 जुलाई से एक बार फिर से मौसम के सक्रिय होने और कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है श्रोतों। बीते 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में जो है वो साफ कमी दर्ज की गई है। केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश जो है वो हुई है श्रोतों। सबसे अधिक 17.4 mm मंडी ज़िला के पंडोह में बारिश हुई है। जोगिंदरनगर में 30.0, कसौली में 3.0 और सेम आंकड़ा रहेगा कसौली का भी श्रोतों। हमीरपुर में 0.5 और बिलासपुर के कहू में 0.4 mm बरखा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान की अगर हम बात माने, मौसम विभाग के अनुसार जो है वो 16 जुलाई को प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। 17 जुलाई को वर्षा की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद 18 और 19 और 20 जुलाई को कई स्थानों पर वर्षा होने तथा कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जो है श्रोतों वो जताई गई है। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप बिल्कुल लाइव अपने वीडियो सेट पर सुन रहे हैं। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा श्रोतों, ये पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

शुद्ध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का, सभी जितने भी हमारे श्रोतागण हैं आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आई श्रोताओं, तो कार्यक्रम तो यूं ही चलता रहेगा, चलिए गीत संगीत जो है श्रोताओं वो भी यूं ही चलता रहेगा और फिलहाल आप सभी को हम लेके चलते हैं श्रोताओं, प्यारे प्यारे से गीत जो है वो यूं ही चलते रहेंगे श्रोताओं आप सभी के रेडियो सेट पर। अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं श्रोताओं, एंटी चिट्टा अभियान के दूसरे चरण में जो है वो स्पेशल टास्क फोर्स ने जो है श्रोताओं वो प्रदेश भर में 840 लोगों को पकड़ा है श्रोताओं। जी बिल्कुल, जबकि 573 एकांत स्थानों पर गहन तलाशी अभियान भी चलाया, साथ ही श्रोताओं जांच के लिए 114 संदिग्धों के नमूने भी जो है वो श्रोतों लिए गए श्रोतों। इसके अलावा जो है वो श्रोतों विशेष अभियान के तहत 2.57 ग्राम चिट्टे की जो है वो भी वसूली हुई और गिरफ्तार किया गया जिसके पास ये 2.57 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया था श्रोतों, है ना जी। 114 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए जो है वो भेजे हैं श्रोतों। प्रदेश में बारिश से बंद 144 सड़कों पर पीडब्ल्यूडी ने दौड़ाया ट्रैफिक श्रोतों। प्रदेश के बारिश के कारण श्रोतों हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण जो है वो बंद पड़ी ग्रामीण सड़कों को यातायात के लिए बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर चलाया गया है। विभाग ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में बंद पड़ी 144 सड़कों को खोल दिया है श्रोतों। शेष सभी सड़कों को जो है वो 2 दिनों में जो है वो खोलने का अब विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में हुई बारिश के कारण लोक निर्माण विभाग के विभिन्न सर्कल में जो है वो सड़कों पर भूस्खलन व लैंडस्लाइड गिरने के कारण जो है वो वाहनों की आवाजाही बंद पड़ गई थी। लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के तहत प्रदेश में कुल 185 सड़कें बंद थी श्रोतों। इनमें 144 सड़कों पर वाहन की आवाजाही बहाल करने का लक्ष्य विभाग ने मंगलवार शाम तक रखा था श्रोतों। बुधवार को 7 बंद पड़ी सड़कों को खोलने का टारगेट जो है वो रखा था श्रोतों, जो कि पूरा भी किया। तो इसी प्रकार से अभी जो है वो कुछ सड़कें जो है वो चालू कर दी गई हैं। आइए फिलहाल आप सभी श्रोताओं को लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः रेडी गुंजन धर्मशाला में। मैं आप सभी का अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर हूँ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला को इस समय श्रोतो होस्ट कर रहा हूँ। बखूबी आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में जो है वो जानकारियों का सिलसिला चलता रहता है, जानकारियों का पिटारा जो है वो खुलता रहता है श्रोताओं, और साथ ही साथ जो है वो अन्य चीज़ें भी हम आप तक साझा करते हैं। जानकारियों के साथ साथ कुछ एक धर्मशाला से जुड़ी जानकारियां जो है वो भी हम आप तक ज़रूर साझा करते हैं, शेयर करते हैं श्रोताओं। चलिए फिलहाल अगली जानकारी ये भी धर्मशाला के दाढ़ी से जुड़ी ही जानकारी है श्रोताओं। 17 जुलाई को, आज 15 है, 17 जुलाई को जो है वो दाढ़ी में बिजली बंद रहेगी श्रोताओं। कहां कहां पर बिजली नहीं रहेगी, किन किन एरियाज़ में जो है वो बिजली नहीं रहेगी, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए बताना चाहते हैं श्रोताओं की लाइनों के सामान्य रख रखाव के लिए जो है वो बिजली बंद रहेगी, कारण ये रहेगा बिजली बंद होने का। 17 जुलाई

ने बारिश की बूंदें बरसा दी तो फिर ये कार्य जो है वो अगले दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएगा श्रोतों, है ना। हो सकता है 18 को हो जाए, और 18 को भी मौसम तो 19 को। तो ये जानकारी वेड़ी गुंजन धर्मशाला के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, और फेसबुक के माध्यम से भी जो है वो आप सभी दर्शकों तक, क्योंकि देखने वालों को दर्शक कहते हैं ना, तो दर्शकों तक पहुँच रही है। फिलहाल आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को, अब वक्त हो गया है श्रोताओं छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद वापस मिलते हैं कुछ एक खास जानकारियों के साथ आप सभी के बीच में।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मुझे पढ़ना है, मुझे उड़ना है।

0: क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट पाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए। तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, अगर जान गए तो।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: बेटी बचाओ देश बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मनाही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान न करें न करने दें।
2: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
3: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
2: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
3: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
2: क्या वो पापा जी मान गए?
3: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना।

शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से श्रोताओं आप सभी का। तो चंबा में ये हिमाचल प्रदेश की जानकारी आप तक मैं साझा कर रहा हूँ जो कि बहुत शर्मसार है श्रोताओं, और वाकई में ही ना ये जब भी जानकारियाँ हम इस प्रकार की आप तक पहुँचाते हैं तो कहीं ना कहीं आहत तो होती है दिल में। चंबा में जो है वो चाचा ने नाबालिका भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। सुलूणी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ श्रोताओं, सुलूणी क्षेत्र में शादीशुदा व्यक्ति ने अपनी ही दो नाबालिग भतीजियों को हवस का शिकार बना डाला। आरोपी ने दोनों सगी बहनों के साथ घर और खेत में अलग अलग स्थानों पर जो है वो जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने तीव्रता कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने बड़ी भतीजी के साथ घर में जबकि छोटी भतीजी के साथ जो है वो खेत में इस घनौने काम को अंजाम दिया। डरी सहमी बच्चियों ने इस बारे में अपने माता पिता को बताया। पिता ने सदर थाना चंबा में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। श्रोताओं, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में डॉक्टरों की एक विशेष टीम की ओर से दोनों पीड़ित बहनों का विस्तृत मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है। एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार जो है वो कर लिया है। बहरहाल कुछ एक जानकारियां यूं ही आपके वीडियो सेट पर चलती रहेंगी श्रोताओं, और वो गीत आप सभी ने ज़रूर सुना होगा ना, गोरे रंग पे इतना गुमान न कर, गोरा रंग तो पल भर में छिप जाएगा या काला पड़ जाएगा।

0: 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं सचिन कपूर हूँ। शाम के 7 बज चुके हैं श्रोताओं, और अब रेडियो गुंजन धर्मशाला में वक्त हो गया है समाचारों का।
1: अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
2: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवां डांगो आरसू की 4th लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जाहरिएवा से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि PH ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शुद्ध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है। इस समय आपका अपना हवेली गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर आपके वीडियो सेट पर बिल्कुल हाजिर हूँ। कार्यक्रम में बहुत से गीत भी आप तक पहुँचाए जा रहे हैं और साथ ही साथ श्रोता उन जानकारियों का पिटारा जो है वो भी धीरे धीरे आप तक पहुँच रहा है। आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और अगली कुछ एक खास जानकारियों के साथ अपने श्रोताओं को रूबरू करवाते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में लगभग 19.40 करोड़ रुपए

की लागत से बनने वाले नगर निगम कार्यालय भवन के शिलान्यास और छोटे व्यापारियों एवं महिलाओं स्वयं सहित समूह के लिए जो है वो लगभग 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित दुकानों तथा ग्रामीण हट के उद्घाटन किए श्रोतों। इसके उपरांत टाउन हॉल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकारी भूमि पर कई वर्ष पहले बसे गरीब एवं भूमिहीन लोगों के मकानों को रियायत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार एक नीति बनाने पर विचार करेगी ताकि उन्हें राहत प्रदान जो है वो की जा सके। श्रोताओं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अतिक्रमण के मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अध्ययन जो है वो कर रही है तथा इस पर उचित निर्णय लिए जाएगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक मशीनों स्थापित करवाने तथा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों एवं प्रोफेसरों की भर्ती पर विशेष ध्यान जो है वो केंद्रित कर रही है श्रोताओं, ताकि लोगों को प्रदेश के भीतर ही एम्स एवं PGI स्तर की चिकित्सा सुविधाएँ जो है वो उपलब्ध हो सकें और उपलब्ध करवाई जा सके। इन चिकित्सा संस्थानों में प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण पर प्रदेश सरकार 125 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर रही है। राज्य सरकार आम मरीजों को अत्यंत महंगी रोबोटिक सर्जरी कम खर्चे पर उपलब्ध करवा रही है। इन कॉलेजों में PC की सीटों में भी जो है वो बड़े स्तर पर बढ़ोतरी की जा रही है श्रोतों। इससे प्रदेश में अधिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध होंगे और स्वास्थ्य सेवाएं सशक्त होंगी श्रोतों। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने क्या कहा ये अगली जानकारी हम आपको बताएंगे थोड़ी ही देर में श्रोतों। जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा, पिटारा इसी तरह जो है वो खुलता रहेगा। रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ आप सभी यूं ही बने रहिएगा और सुनते रहिएगा गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। गीत के बोल हैं श्रोतों पंछी। जी बिल्कुल, ये गीत ना बहुत फेवरेट है, बहुत लोगों का फेवरेट है श्रोताओं, और इस गीत को हम आप तक पहुंचाएंगे पंछी नदियां पवन के सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में। ये प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट पर। पंछी सुर में गाते हैं इस गीत के बोल हैं श्रोताओं, और सुर में तो हम और आप भी बने हुए हैं वीडी गुंजन धर्मशाला की इसी सुर लहरियों के साथ जो है वो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और बने हैं गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी बने हैं इस समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ। और देखिए ना, शाम का वक्त जो है वो बड़ा हसीन रहता है। सभी अपने अपने घर की ओर जो है वो अग्रसर होते हैं, अपने घर की ओर जो है वो जाते हैं। और उसी बीच में अगर आपने रेडियो गुंजन को ट्यून किया है तो ये मानिए कि हाँ, सफ़र जो है वो और भी ज़्यादा हसीन हो जाता है, ये लम्हे जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं अगर आपने 91.2 FM को ट्यून करके रखा हुआ है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं, जिला ऊना में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% पूर्ण कर लिया गया है। श्रोताओं, इस उपलब्धि पर जो है वो उपायुक्त जतिन लाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनगणना से जुड़े 19 चार्ज अधिकारियों को सम्मानित किया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पहले 3 चार्ज अधिकारियों को जो है वो स्मृति चिन्ह एवं एप्रिसिएशन लेटर प्रदान किया है श्रोताओं, जबकि अन्य अधिकारियों को जो है वो एप्रिसिएशन लेटर ही जो है वो दिया गया है। श्रोताओं जी बिल्कुल, इसके साथ अगली जानकारी की ओर आपको थोड़ा सा रुख करवाते हैं। श्रोतों, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में जो है वो MOU के ड्राफ्ट की समीक्षा की है। श्रोतों, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि समझौते में हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाए। संशोधित व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश के जलाशय के से ज़रूरत के अनुसार पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। श्रोतों, इसी तरह से जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और आप सभी का सफ़र जो है वो भी यूं ही चलता रहेगा। आप सभी के सफ़र को खूबसूरत बनाने में हम बिल्कुल मौजूद हैं और ये कोशिश हमारी जो है वो बिल्कुल रहती है। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शो तो बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना। मैं हूँ आपका अपना नाचीज सचिन कपूर और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय चला हुआ है। श्रोता हूँ, बहुत प्यारा सा ये गीत था, अगर तुम साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही, मैं नाचीज सचिन कपूर भी जो है वो आप सभी को यूं ही रूबरू करवाता रहूँगा अनेकों गीतों के साथ, अनेकों जानकारियों के साथ। श्रोता हूँ, हमराज मूवी से लिया गया ये गीत है श्रोताओं, और महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना आपके अपने रेडियो सेट पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। तो जानकारियों का पिटारा जाहिर सी बात है खुलता जा रहा है और आप सभी रूबरू भी जो है वो हो रहे हैं श्रोताओं। चलिए फिलहाल ये जानकारी आप तक पहुंचाते हैं श्रोताओं। धीमी रफ्तार से बन रहा है जसूर फ्लाईओवर और रोज़ाना जो है वो वहाँ पर जाम लग रहा है और जाम के कारण जो है वो आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। खासकर यात्री परेशान हो रहे हैं, वहाँ के जो व्यापारी हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको भी नुकसान जो है वो हो रहा है श्रोताओं। ये पूरी जानकारी आप तक हम पहुँचाते

हैं आप सभी बने हुए इस समय आज से सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। नूरपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यापारी के कस्बे में जसूर में फोर लाइन सड़क पर योजना के तहत बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए बना अभी तक तो बन रहा है ना फ्लाईओवर जो बन रहा है अच्छी व्यवस्था के लिए बन रहा है कि यातायात जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे और बढ़िया बने। लेकिन उसका निर्माण जो है वो कहीं ना कहीं धीमा हो चुका है श्रोताओं, और उसके कारण अभी तक जो है वो पूरी तरह से यातायात बिगड़ा हुआ है श्रोताओं, और आए दिन जो है वो यातायात व्यवस्था प्रभावित होती नज़र आ रही है। कई बार ट्रैफिक जाम की समस्या भी आ जाती है जिससे आम जन को परेशानी का सामना जो है श्रोताओं वो करना पड़ता है। इस समय निर्माण कंपनी द्वारा जो है वो इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य ज़ोरों से चलाया हुआ है, परंतु निर्माण कार्य के चलते यहाँ एकमात्र मुख्य एवं व्यस्त सड़क मार्ग होने के कारण यहां यातायात की समस्या पेश आती रहती है श्रोताओं। जसूर एक व्यापारिक कस्बा है जैसे कि हम सभी बखूबी जानते हैं, और व्यापारिक कस्बा होने के कारण जो है वो कहीं ना कहीं चाहे वो सब्जी मंडी होने के कारण भी और सड़क मार्ग का एक महत्वपूर्ण सड़क जंक्शन है। यहाँ से होकर पठानकोट पंजाब अभी हम सभी जाते हैं, कांगड़ा शिमला मंडी मनाली व चंडीगढ़ आदि के जाने के लिए भी यहाँ से होकर जो है वो पंजाब वालों को गुजरना पड़ता है, ट्रैफिक गुजरता है श्रोतों। तथा नूरपुर चंबा चुवाड़ी ज्वाली नगरोटा सूर्या फतेहपुर तलवाड़ा गंगरत इंदौरा के लिए भी जो है हमें यहीं से होकर बसों में या अन्य वाहन से जो है वो गुजरना पड़ता है श्रोतों, जिसके कारण यहाँ यात्री व लोगों की भीड़ बनी रहती है श्रोतों। तो आइए कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप सभी समय बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं जनाब। तो लेके चलते हैं आप सभी को अब इस प्यारे से गीत की ओर श्रोताओं।

तो बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ सचिन कपूर और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं हमारे साथ बिल्कुल लाइव। और अब वक्त हो गया है श्रोतों वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं अंतराल के बाद आप सभी के वीडियो सेट पर।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मुझे पढ़ना है, मुझे उड़ना है।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना, क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट पाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब,
0: हाँ,
1: एक सेल्फी।
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, फिर।
1: ओ यस यस, हाँ सर।
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल। भैया अगर जान गए जवाब।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम

0: तो बिजली बचाओ देश बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मना ही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान न करें न करने दें।
2: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
3: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
2: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
3: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
2: क्या वो पापा जी मान गए?
3: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना नाचीज सचिन कपूर। श्रोताओं अब वक्त हो गया है वेडी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: वहीं स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में 630 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज अगस्त महीने में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक मशीनें स्थापित करवाने और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि लोगों को प्रदेश में ही एम्स व पीजीआई स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके।
2: और टांडा चौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में

0: जो एम्स में टेक्नोलॉजी लगी है दिल्ली में पीजीआई में भी नहीं, उस टेक्नोलॉजी को मैंने चारों पांचों मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध करवा दिया। आज डॉक्टरों की बहुत कमी है और खासकर डायग्नोस सिस्टम में बहुत कमी है। जहां 40 साल में 270 सीटें पीजीआई की हुई, हमने इस वर्ष मैंने खुद व्यक्तिगत अनुरोध करके व्यक्तिगत रुचि लेकर 240 पीजी की सीटें मेडिकल कॉलेज में।
1: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर योजना में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर में हुए भ्रष्टाचार के जांच की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी।
2: हिमकेयर योजना तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। जयराम जी को पता ही नहीं चला कि उनके नीचे क्या होता गया, उसकी इंक्वायरी उनके सामने रखेंगे विधानसभा में।
1: मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हमीरपुर में करीब 130 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के सबसे बड़े बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है और वर्तमान बस अड्डे की जगह लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में करीब 19 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नगर निगम कार्यालय के भवन का शिलान्यास और छोटे व्यापारियों व महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए निर्मित दुकानों व ग्रामीण हाट का उद्घाटन भी किया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
3: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि औषधीय पौधों के वैज्ञानिक उपयोग से हिमाचल प्रदेश में बागवानी केंद्र के साथ साथ हरित उद्यमिता की राजधानी बनने की क्षमता है। राज्यपाल आज प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र समूह द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औषधीय जड़ी बूटियों, सुगंधित पौधों और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों का समृद्ध भंडार है। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि वैज्ञानिक खेती, मूल्य संवर्धन और नवाचार के माध्यम से इस भंडार का उपयोग कर हजारों युवाओं के लिए सतत आजीविका के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के तहत सी ग्रेड सेब खरीद की नई व्यवस्था के राज्य सरकार के फैसले को बागवानों के साथ सरासर अन्याय बताया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार सेब खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत में बागवानों के अधिकारों पर कैंची चलाई जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नए नियमों के अनुसार अब एक बागवान से अधिकतम केवल 30 बोरी सी ग्रेड सेब ही खरीदा जाएगा, जो सीधे तौर पर बागवानों के हितों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बागवानों को राहत देने के बजाय हर रोज नई गाइडलाइन जारी कर उनका मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा बागवानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रदेश सरकार के इस जन विरोधी फैसले के खिलाफ बागवानों की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक पूरी मजबूती के साथ बुलंद करती रहेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। ऊना जिला ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण व मकानों की गणना का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर प्रदेश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। उपायुक्त जतिन लाल ने इस उपलब्धि पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 चार्ज अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्होंने इन सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि जनगणना राष्ट्र निर्माण की आधारभूत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से विकास योजनाओं के निर्माण व प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्टीक आंकड़े उपलब्ध होते हैं। भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल करार दिया है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, कुशासन और प्रशासनिक विफलताओं का नया रिकॉर्ड बनाकर इतिहास में दर्ज होगी। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार बेहतर शासन के दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय स्वीकृत नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ये राशि वापस कर प्रदेश के हजारों युवाओं के रोजगार के अवसर छीन लिए। विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में खनन माफिया सक्रिय है और सरकार से जुड़े लोग खनन से लाभ उठा रहे हैं।
4: ये सरकार केवल और केवल मंत्रिमंडल में ही विफल नहीं हुई है, पिछले 4 वर्षों में एक निराशा का वातावरण रहा है, एक हताशा का वातावरण रहा है, आम जनमानस दुखी है। केंद्र सरकार द्वारा जहां जहां मदद करने की कोशिश की जा रही है, वहां वहां केंद्र सरकार के कामों को रोका जा रहा है। प्रदेश की सरकार में बड़े बड़े लोग माइनिंग में इन्वॉल्व हैं, जगह जगह के ऊपर जहाँ जहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर माइनिंग होती है, वहाँ वहाँ कांग्रेस के सरगने, कांग्रेस के नेता उन माइनिंग के लोगों के साथ मिले हुए हैं।
3: मुख्यमंत्री के मिशन रिपीट के दावे पर पलटवार करते हुए विक्रम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम से कांग्रेस की वास्तविक स्थिति सबके सामने आ चुकी है और प्रदेश की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है।
4: आप रिपीट की बात कर रहे हो, ये पूर्ण रूप से डिफीट होंगे। और अभी प्रेजेंटली जो सिचुएशन है हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज सिस्टम के अंदर, आप लोगों ने देख लिया, जिला परिषद के अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के विषय में देख लिया, कहां कांग्रेस खड़ी होती है। माननीय श्री सुक्खू जी के कारण से हिमाचल प्रदेश में से कांग्रेस का बीज का जो है वो समाप्त हो जाएगा, अब दोबारा कांग्रेस आएगी नहीं, ये नया कीर्तिमान जरूर स्थापित करेंगे आदरणीय सुक्खू।
3: केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। सोलन जिला में करीब 2500 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है। आत्मा परियोजना के निदेशक हीरालाल आजाद ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार क्लस्टर बनाकर किसानों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना और किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है।
5: नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, उसके अंतर्गत जो प्रोविजन है किसानों को क्लस्टर में जोड़ना है, समूह में जोड़ना, तो 50 क्लस्टर्स के अंतर्गत 2500 हेक्टेयर भूमि को नेचुरल खेती के अंतर्गत लाया है। सरकार का जो दिशा निर्देश है वो ये है कि किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ प्रेरित करना है, ताकि कम से कम जहर का प्रयोग खेतों में हो और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो जहर के हानिकारक प्रभावों से बच सके।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकारी भूमि पर वर्षों से बसे गरीब व भूमिहीन लोगों के मकानों को रियायत देने के लिए नीति बनाने पर विचार करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में एम्स व पीजीआई स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, औषधीय पौधों के वैज्ञानिक उपयोग से हिमाचल में हरित उद्यम राजधानी बनने की क्षमता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने MIS के तहत सी ग्रेड सेब खरीद की नई व्यवस्था को बागवानों के साथ अन्याय बताया और ऊना जिला ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर प्रदेश भर में तीसरा स्थान किया हासिल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
6: श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ नाचीज सचिन कपूर। तो श्रोतो, मुझे एक शायरी जो है वो याद आई और भूल भी गया। हाँ जी, याद ये आई कि पागल कैसे होते हैं, पागल कैसे होते हैं, हमें देखिए हमारे जैसे होते हैं। ख्वाबों का धंधा करते हो, ख्वाबों का धंधा करते हो, कितने पैसे होते हैं। हमारे काम तो खुदा करता है, हमारे काम तो ईश्वर करता है। तुम्हारे यार वैसे हो जाते हैं, तुम्हारे यार ऐसे ही हो जाते हैं। तो इसी जाते जाते एक शायरी याद आई थी, सोचा अपने श्रोताओं को जो है इस शायरी के साथ मैं रूबरू करवाऊं। तो अब मुझे यानी सचिन कपूर को आप दीजिए इजाज़त। श्रोताओं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए, बुज़ुर्गों की सेवा ज़रूर करें और बिल्कुल प्यार बनाकर आपस में जो है वो ज़रूर रखें। नमस्ते धर्मशाला।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बाबा बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आग तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आग तो ठीक करवाइए।
1: यस यस, हाँ सर।
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, अगर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को

तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है। यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: तो बिजली बचाओ, देश बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर। एक मौत की सौगात है, जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मनाही है कानून है, फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें।
2: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
3: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
2: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
3: अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बात। हेलो, नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके।
2: क्या वो पापा जी मान गए?
3: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?